0: रेडियो सीटीवी एंड C5 प्राउडली प्रेजेंट हमारे राम प्रोड्यूस्ड बाय फेलिसिटी थिएटर इंडिया और दुबई में हाउसफुल शोज के बाद अब पहली बार लंदन में देखिए आशुतोष राणा को एस रावण और राहुल आर भुचर को प्रभु श्री राम के रूप में रामायण की अनडिस्कवर्ड स्टोरीज लाइव ऑन स्टेज 9-12 July इवेंटिम अपोलो हैमरस्मिथ हमारे राम
1: बुक योर टिकट्स नाउ ऑन eventimapollo.co.uk एंड यूज कोड हमारे राम 10 फॉर 10% डिस्काउंट ऑन ऑल शोज एंड टिकट
0: एक्सक्लूसिव रेडियो partner like our radio
2: location location location
3: in real estate location is everything and this one is a winner
2: introducing greens by daniel a premium collection of townhouses and villas
3: located in dubai in a prime location for high appreciation
2: step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium italian furnishings
3: step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community
2: and the best part townhouses and villas greens start from just 711,000 pounds
3: to book call our london office on 020-3963-5757. Greens by Danube. Prime location.
2: High appreciation.
3: In Dubai.
0: Wake up to Kajal every weekday morning on Breakfast. Like a radio.

0: साउथहॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान। देखिए दुबई की शान, फ्लाइट, होटल, साइट सींग, डेजर्ट सफारी, यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम। साउथहॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में लाके दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे। तो दुबई के लिए तैयार? यू डू द पैकिंग, दिल डू द प्लानिंग। कॉल साउथहॉल ट्रेवल ऑन 02085748410। दैट्स 85748410। Southall Travel, at all protected.
1: 40 million people listen to commercial radio each week. That's 80 million ears, give or take. Amplify your advertising at radiocentre.org.
2: This is the largest commercial Asian radio network in the UK. Sounding good throughout the night with the biggest soothers. It's your Leica Radio.

गावे को गुण वडियाईया चार, गावे को विद्या विखम विचार, गावे को साज करे तनखे, गावे को जी लय फिर दे, गावे को जापे दिसे दूर, गावे को वेखे हादरा हदूर, कथना कथिना आवे तोट, कथ कथ कथी कोटी कोट कोट, देंदा दे लेंदे थक पाहे, जुगा जुगंतर खाई खाए, हुक्मी हुक्म चलाए राव, नानक विकसै बे परवाह।

होए लख दरियाओ कुदरत कवन कहा विचार वारिया ना जावा एक वार जो तुद भावे साई बलिकार तू सदा सलामत निरंकार असंख जप असंख भाव असंख पूजा असंख तपताओ असंख ग्रंथ मुख वेद पाठ असंख जोग मन रहे उदास असंख भगत गुण ज्ञान विचार असंख सती असंख दातार असंख सूर मोह पक्षार असंख मोन लिवलाए तार कुदरत कौन कहा।

असंख चोर हराम खोर, असंख अमर कर जाए जोर, असंख गलवड हत्या कमाए, असंख पापी पाप कर जाए, असंख कूड़े यार कूड़े फिराए, असंख मलेच मल भक खाए।

है साई वलिकार, तू सदा सलामत निरंकार। असंख नाव असंख थाव, अगम अगम असंख लो, असंख कहे सिर भार होए।

वाजिब तिस दी वडियाई, जो तिस भावे सोई करसी हुक्म ना करना जाई, सो पातशाह साह पत साहिब नानक रहंड जाई।

0: Isha Basmati Rice. Available now at all Falcon stores, Worli Superstore, Opus and all independent stores nationwide.
1: Weddings, celebrations, corporate events. At Ragasan, we take care of everything from sourcing the perfect location, designing incredible themes, and creating world-class cuisines and managing every detail through to the finish. With over 30 years of experience, we specialize in delivering truly exceptional class events. Call us on 020 8839 0880 and visit ragasan.com to begin your journey. Ragasan, locate, design, manage, cater.
2: हे फ्रेंड्स के साथ वीकेंड पार्टी हो या खुद के साथ नेटफ्लिक्स एंड चिल अ देसी तड़का इज टोटल रिस्क है ना
3: वेल शी इज टॉकिंग अबाउट जयमीन फूड पोटैटो चिप्स क्रंची टेस्टी एंड टोटल देसी स्वाद इन चार मजेदार फ्लेवर्स
2: क्रंच कैन नॉट वेट सो विजिट योर नियरेस्ट एथनिक स्टोर एंड ग्रैब योर जयमीन फूड्स पोटैटो चिप्स नाउ
4: If I'm going out on my new paddleboard, the last thing I'm taking is my phone, right? Buoyancy aid, fine, but mobile? My whole life's on that phone. Why would I risk losing

0: Shah Basmati Rice. Available now at all Falcon stores, Worli Superstore, Opus and all independent stores nationwide.
1: Welcome to the jungle.
2: Film? Bilkul fake.
1: Hamari film army wali.
3: और उसके लिए आप सभी को ट्रेनिंग की जरूरत है.
2: डेंजर एकदम रियल और सर्वाइवल स्किल्स जीरो.
1: और स्टार कास्ट है
2: अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, अर्शद वारसी, परेश रावल एंड यू स्टार कास्ट ब्रिंग जंगल मैडनेस टू सिनेमास.
4: अन्ना कभी बाप जन्म में भी किसी ने गन पकड़ा था क्या?
2: वॉच वेलकम टू द जंगल इन सिनेमास नाउ.
5: चलो तुम दोनों को तो ऐसे फटके मारूंगा ना मैं
6: किस लिए फिल्म में.
7: जी टीवी एच डी पर देखिए नई कहानी तू ही रे दिल में.
8: स्वाति जब से लाइफ में आई है लाइफ ना कंप्लीट सी लगती है.
9: इतना ही प्यार हमेशा रहेगा ना संजय.
10: मगर नियति को क्या कुछ और ही है मंजूर.
11: वृंदा तेरे सपनों का राजकुमार अब सच में तेरा होने जा रहा है.
10: तीन मासूम जिंदगियां किस्मत के जाल में.
7: तू ही रे दिल में रोज शाम 5 बजे जी टीवी एच डी पर. अवेलेबल ऑन स्काई 707, स्काई ग्लास 714, वर्जन मीडिया 809, BT 394 एंड Z5 ऐप.
12: Are you ready to embark on the journey of a lifetime? Look no further than City Bond Travel, your trusted local travel agent with an astounding 50 years of experience. From worldwide flights to exotic holiday packages, captivating group tours, luxurious cruises, and soul-enriching yatras, we've got it all. Call City Bond Travel on 0116 266 6601 or visit our office on 5 Melton Road, Leicester.
13: Mom, have you bought some of those delicious noodles?
14: You mean Koka, the king of noodles? Koka means delicious. Variety of flavors available in Koka packet, Koka cup and Koka bowl noodles. Suitable for vegetarians and halal approved. The king of noodles, Koka noodles, packets, cups and bowls, now available everywhere in the UK.
15: Pepe's, famous for flame-grilled marinated chicken with over 215 stores nationally. Download the Pepe's app where you can choose to have your order collected or delivered. Delivery is available in selected stores. Every first order on the Pepe's app, customers receive a 10% discount. Plus a chance to spin to win some fantastic prizes. Order at Pepe's today.
16: Yeah, like a gold.

0: लीजिए, ये थी रफी साहब की आवाज, साथ दे रही थी आशा भोसले, म्यूजिक बाय आरडी बर्मन, और उससे पहले आपने सुना चांदनी फिल्म का गाना जिसमें शिव हरि का म्यूजिक था, यश चोपड़ा की फिल्म थी और श्रीदेवी ऋषि कपूर ने काम किया था। दो गीतों के साथ आज के प्रोग्राम की शुरुआत हुई है। आज है फ्राइडे का दिन और आप सुन रहे हैं लाइका गोल्ड इन ग्रेटर लंदन एंड लाइका रेडियो इन मिडलैंड्स, और मैं हूं रितु शर्मा, सिटिंग इन फॉर रवि शर्मा जी। एक बजे तक आपका मेरा साथ रहेगा। तो सबसे पहले ये बताइए कि क्या हालचाल है, ठीक ठाक है, मौसम को एंजॉय कर रहे हैं? आज भी मौसम गर्मा गर्म रहने वाला है, लेकिन यहाँ के मौसम की ये खासियत है कि दोपहर में चाहे कितनी भी गर्मी हो जाए, एटलीस्ट शाम और सवेरे तो अच्छा मौसम रहता है, अच्छी ठंडक रहती है। कल भी अच्छा था शाम के टाइम पर, और आई एम होपिंग कि आज भी रात को टेम्परेचर कम हो जाएगा और हम सब चैन की नींद सो पाएंगे। इस बारे में बातें होती रहेंगी, लेकिन फिलहाल एक बार फिर से आपको याद दिला दे।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: तो आज 1 pound के बदले में आपको मिलेंगे 124.2 भारतीय रुपए, लेकिन याद रखिए ये ट्रांसफर आपको करवाना होगा via SBI branch online और by using the Yono SBI UK mobile app. लेकिन जून महीने के खत्म होने से पहले पहले आप 75 पाउंड्स का वाउचर जीत सकते हैं एवरी डे व्हेन यू सेंड ओवर 1000 पाउंड्स। ऑल्सो अ ग्राम 1 gram गोल्ड कॉइन एवरी वीक व्हेन सेंडिंग ओवर 2000 पाउंड्स। टर्म्स एंड कंडीशंस डू अप्लाई।
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.
2: Ye hai
1: Leica Radio.
2: Leica Radio.
1: Football score updates brought to you by Rack Law Solicitors, specialists of family law, immigration law, property, civil disputes, wills and probate and for other legal requirements.
0: तो आज भी फीफा वर्ल्ड कप में बहुत सारे मैचेस खेले जाने वाले हैं। आज ग्रुप एफ में ट्यूनिशिया और नेदरलैंड्स की टीम ऑलरेडी शायद खेल रही है 1-3 से। मुझे स्कोर्स का तो इतना आइडिया नहीं है बिकॉज मैं इसको फॉलो नहीं कर रही हूँ, लेकिन आपको बता दें कि जापान और स्वीडन की टीम्स आज भिड़ेंगी। आज पैराग्वे और ऑस्ट्रेलिया की टीम्स के बीच में मैच होगा। सेनेगल और इराक की टीम्स आज खेलेंगी। लेकिन फीफा वर्ल्ड कप देखने के साथ साथ आप ये बिल्कुल मत भूलिएगा कि आप 15 मिनट्स की फ्री लीगल एडवाइस ले सकते हैं विद अवर स्पॉन्सर्स रैक लॉ इफ यू मेंशन लाइका।
1: This update was sponsored by Rack Law Solicitors. Call 0203 345 2000 or visit raklaw.co.uk. Get all the latest travel updates for the Midlands at Breakfast and Drive. This is the Leica Radio Network, the largest Asian commercial radio network in the UK. Broadcasting in Greater London, Greater Manchester and the Midlands. Tune in wherever you are in the world by downloading the Leica Radio mobile app. Listen live or listen back to your favorite shows. Or log on to leicaradio.com and listen via the website. If you like what you hear, do tell us. Email us info@leicaradio.com. Or you can advertise on the Leica Radio Network by emailing sales@leicamedia.co.uk. This is the Leica Radio Network across London, Manchester and the Midlands.
3: Location, location, location.
4: In real estate, location is everything. And this one is a villa.
3: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
4: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
3: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
4: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
3: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
4: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Danube. Prime location.
3: High appreciation.
4: In Dubai.
5: Welcome to the jungle.
3: Film, bilkul fake.
5: Hamare film army wali. और उसके लिए आप सभी को ट्रेनिंग की जरूरत है।
3: डेंजर एकदम रियल और सर्वाइवल स्किल्स जीरो।
6: और स्टार कास्ट है
3: अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, अर्शद वारसी, परेश रावल एंड यू स्टार कास्ट ब्रिंग जंगल मैडनेस टू सिनेमास।
7: अन्ना कभी बाप जन्म में भी किसी ने गन पकड़ा था क्या?
3: वॉच वेलकम टू द जंगल इन सिनेमास नाउ।
8: पहले तुम दोनों को तो ऐसे फटके मारूंगा ना मैं
9: किस लिए फिल्म में
10: 105 शोज पूरा कर्या पछी हवे लेस्टर मा आवी रह्यु छे एक धमाकेदार इंटरनेशनल गुजराती कॉमेडी नाटक।
11: जेज एंटरटेनमेंट लईने आवी रह्या छे सखना रे जो हसबंड जी,
10: लीना शाह अने समीर शाह साथे हास्यनो फुल डोज। 28 जून पीपल सेंटर लेस्टर मा बे शानदार शोज बपोरे 8 वागे अने सांजे 7 वागे। टिकट्स बुकिंग माटे कॉल करो मिस्टर B07860280655 मुंबई सैंडविच स्टेशन 07834832249 अथवा eventbrite.co.in UK. Second out, Ejo. Husband G.
9: Are we there yet?
12: Okay, bags are here. Where's the taxi? I can't load the map.
13: Relax. I've booked the Uber already.
12: How? My roaming isn't even working yet.
13: I switched to Simzy before we left London.
12: Simzy? Since when are you the tech expert?
13: Since I decided I want a stress-free holiday.
14: Don't let roaming ruin your holiday spirit. Get the Simzy eSIM for affordable data in India and across the globe. Simzy. Holiday travel simplified.
15: T's and C's. Please apply.
16: वेडिंग सेलिब्रेशंस, कॉर्पोरेट इवेंट्स, लागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं। परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक, वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं। 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए। फौरन का फोन मिलाएं 02088390880 और विजिट ragasan.com। लोकेशन, डिजाइन, मैनेजमेंट या केटरिंग, रागासन।
17: Pepe's Piri Piri is firing up something big. Our store is now open. From flame grilled chicken to mouth-watering wraps, it's bold, it's spicy, it's pure Pepe's. Visit us at 126 Abbey Street, CV 11 5BZ. Pepe's Piri Piri. Pepe-licious.
18: You probably think you're pretty good at multitasking behind the wheel. I mean, you have to multitask to drive. So what's wrong with checking your phone? The thing is, your brain simply... for quick reply, affects your concentration, and makes you less able to react to hazards. If you use a mobile phone while driving, you're 4 times more likely to crash. Think. Put your phone away.
19: Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free 2025 catalogue today. Call on 0208 507 7900 or download the catalogue from heraldpackaging.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldpackaging.com.
20: Dreaming of Europe? Explore Paris, Switzerland, Holland, Italy and more with Mantra Holidays. Our tours offer authentic Indian food, experienced tour managers and Schengen visa assistance for a hassle-free journey where we take care of everything. Visit mantraholidays.co.uk or call 020-3773-633 now. That's 020-3773-633. APTA bonded. Mantra Holidays. What's your travel mantra?
1: This is the largest commercial Asian radio network in the UK. Feel Good Track, brought to you by Dairy Valley.
21: Soft and tender, like grandma's warm hug, Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: लता जी की आवाज में था ये गाना और ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी स्मिता पाटिल के लिए जिन्होंने इस फिल्म में अमिताभ बच्चन के साथ काम किया। ये गाना बड़ा ही मशहूर हुआ था। इनफैक्ट इस फिल्म के सारे गाने बहुत ज्यादा पॉपुलर थे और इस फिल्म को पसंद तो किया गया अमिताभ बच्चन, स्मिता पाटिल और दिलीप कुमार के लिए। दिलीप कुमार के फैंस ने इस फिल्म को खूब देखा क्योंकि दिलीप कुमार साहब का क्रेज अपने जमाने में भी था और जब तक उन्होंने फिल्में की तब तक उनका क्रेज वैसा ही बना रहा। इस गाने को आप सबने पसंद किया है, आपके ढेरों मैसेजेस मुझे मिलते जा रहे हैं, सभी को थैंक यू कहना चाहती
1: हूँ। हैप्पी हलवाई ब्रिंग्स योर टेस्ट बड्स ओडल्स ऑफ हैप्पीनेस विद ऑथेंटिक गुलाब जामुन, रसमलाई, मोतीचूर लड्डू एंड मच मोर। विजिट happyhalwai.com।
2: मनोरंजन विद रवि शर्मा।
0: बिल्कुल सही सुना आपने, ये है रवि शर्मा जी का मनोरंजन प्रोग्राम जहां पर आज ऋतु शर्मा, इस पूरे वीक ऋतु शर्मा आपके साथ रही और अगले वीक भी मैं आपके साथ रहूंगी क्योंकि रवि शर्मा जी हॉलिडे मना रहे हैं और सबको ये मौका मिलना चाहिए, हॉलिडे जरूरी होता है लाइफ के लिए, तो इसलिए मैं आपके साथ हूँ और आपके ढेरों मैसेजेस मुझे मिलते जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी सुनने वालों को मेरा प्यार भरा नमस्कार, मोहब्बत भरा सलाम और बड़े ही प्यार के साथ आपने ढेरों मैसेजेस भेजे हैं तो चलिए डालते हैं उन पर एक नजर। सबसे पहले मैसेज भेजा है हमारी जासू जी ने, कहती है ऋतु क्या आज आप टाइम पर आ गई हो काम पर? बिल्कुल, आज तो मैं 40 मिनट्स अर्ली आ गई थी, मैंने सोच के रखा था कि आज तो मैं टाइम से बहुत पहले ही पहुंच जाऊंगी क्योंकि आप पहले आ जाओ, मैं अक्सर ही बहुत जल्द आ जाती हूँ ताकि मैं अपने शो को अच्छे से प्रिपेयर कर पाऊँ और जब आप लास्ट मोमेंट पर आते हैं तो ऑब्वियसली हमें ही मुश्किल होती है, तो आज ऐसा कुछ भी नहीं रहा, थैंक गॉड, भगवान की कृपा है कि मैं बिल्कुल टाइम पर आ चुकी हूँ। थैंक यू आपके मैसेज के लिए। एंड राजीव पटेल जी, आपने बताया कि आपके डैड ने कल, डॉक्टर धानजी भाई ने बहुत ही मजे के साथ सूरत गुजरात में अपनी 100वीं बर्थडे सेलिब्रेट की है और आपकी मदर ने उनके साथ केक काटा है विच इज़ अमेजिंग। 100वीं बर्थडे उन्होंने मनाई है, ये बहुत ही खुशी की बात है क्योंकि हर इंसान को ये वाला आंकड़ा पूरा करने का मौका नहीं मिलता है, तो आपको भी बहुत बहुत बधाई है और हम चाहते हैं कि उनका आशीर्वाद आपके साथ बना रहे और उनकी सेहत अच्छी रहे, तो सभी लोगों को ढेरों बधाइयां। जासू जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपका मैसेज पढ़ चुकी हूँ। हरीश रुदा जी, थैंक यू साथ देने के लिए। एंड हमारे गिरीश जी कहते हैं कि पूरा हफ्ता आपके साथ कैसे बीत रहा है पता ही नहीं चल रहा, थैंक यू, इज अ ह्यूज कॉम्प्लीमेंट गिरीश जी हमेशा साथ देने के लिए। थैंक यू प्रेगना कहती है मैं छुट्टी पर हूँ तो मेरे पसंद के गीत तो बजाती रहना। हाँ, कोशिश तो यही रहेगी कि आपके सबके पसंद के गीत बजाऊं। थैंक यू नरेंद्र पांचाल जी, हैरो से महेंद्र जी, महेंद्र पटेल जी, अर्जुन जी, मिसेस शेख, भरत गंगाराम जी कहते हैं मैंने पूछा ना हालचाल कैसे है तो कहते हैं हालचाल बहुत गर्म है ऋतु जी। ये हाल तो भरत जी हम सभी का है, सभी की हालचाल आजकल बहुत गर्मा गर्म है, लेकिन कुछ ही दिन की बात है, यहाँ तो हमेशा ठंडक रहती है, ये थोड़ी गर्मी है इसे इंजॉय करो, कंप्लेन नहीं करने का, मुझे पता है कंप्लेन नहीं कर रहे, सिर्फ अपने हालचाल बता रहे। थैंक यू मृदु जी, निर्मला जी, रानी जी, वियाना मैंने सोनी सुन रहे हैं, तो सुरंकी तोची जी, सहर चंदू शाह हमारे साथ है, तो सभी साथियों का एक बार फिर से स्वागत है और चलिए बढ़ जाते हैं आगे और सुनाते हैं आपको आज के प्रमुख समाचार। तो आज के प्रमुख समाचारों में सबसे पहले खबर आ रही है भारत से। भारत सरकार का बड़ा फैसला है कि इंडियन यूजर्स का डेटा अब देश से बाहर नहीं जाएगा। आज सरकार ने डेटा प्राइवेसी को लेकर एक बहुत बड़ा और कड़ा फैसला लिया है। इन नियमों के मुताबिक अब जितनी भी टेक और सोशल मीडिया कंपनीज हैं, उन्हें भारतीय यूजर्स का पर्सनल डेटा भारत के अंदर ही स्टोर करना होगा। इसे देश से बाहर भेजने पर पूरी तरह से बैन लगा दिया गया है। सरकार का कहना है कि ये कदम देश की सुरक्षा और लोगों की प्राइवेसी को ध्यान में रखकर उठाया गया है। बिजनेस को आसान बनाने के लिए सरकार ने आज टेलीकॉम सेक्टर में बहुत बड़ा सुधार किया है। सालों से चले आ रहे जटिल लाइसेंस राज और कड़े नियमों को काफी हद तक खत्म या आसान कर दिया गया है। इससे नई कंपनियों को मार्केट में आने का मौका मिलेगा और जो पुरानी कंपनीज हैं वे अपनी सर्विसेज को और बेहतर कर पाएंगी। आम जनता के लिए इसका मतलब है कि आने वाले समय में बेहतर नेटवर्क और बेहतर इंटरनेट स्पीड। पूरे 7 दिन के बाद टेलीग्राम ऐप की वापसी भारत में हो गई है। पिछले हफ्ते कुछ टेक्निकल और लीगल इन्वेस्टिगेशंस के चलते मैनेजिंग ऐप टेलीग्राम पर अस्थायी रोक लगा दी गई थी। आज पूरे 7 दिनों के बाद टेलीग्राम की तरफ से ग्रीन सिग्नल मिलने पर टेलीग्राम को दोबारा पूरी तरह से चालू कर दिया गया है। कंपनी ने सरकार की सभी गाइडलाइंस को मानने का भरोसा दिया है, जिसके बाद यूजर्स अब बिना किसी रुकावट के ऐप का इस्तेमाल कर पा रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर पासपोर्ट वेरिफिकेशन और नए नियमों को लेकर कई तरह की अफवाहें, फेक न्यूज उड़ रही थी, जिससे लोग काफी परेशान थे। आज विदेश मंत्रालय ने इस पर साफ साफ स्टेटमेंट जारी किया है। सरकार ने कहा है कि नियमों में ऐसा कोई बदलाव नहीं हुआ है जिससे आम जनता को परेशानी हो, बल्कि वेरिफिकेशन की प्रोसेस को और ज्यादा पारदर्शी या ट्रांसपेरेंट और डिजिटल बनाया गया है। और अगर आप सोना या चांदी खरीदने की सोच रहे हैं तो आज का दिन आपके लिए परफेक्ट है। ये भारतवासियों के लिए खबर है। आज सुबह सराफा बाजार खुलते ही सोने और चांदी की कीमतों में जबरदस्त गिरावट देखने को मिली। ग्लोबल मार्केट में हो रहे बदलावों की वजह से घरेलू बाजार में भी कीमतें काफी नीचे आ गई हैं, जिससे शादी ब्याह के सीजन की खरीदारी करने वालों को बड़ी ही राहत मिली है। और चलिए अब सुनाते हैं कुछ खबरें देश की, दुनिया की, दुनिया में क्या हो रहा है। ग्लोबल मार्केट से आज एक बहुत अच्छी खबर आई है। कच्चे तेल क्रूड ऑयल की कीमतें पिछले 4 महीनों में सबसे निचले स्तर पर आ गई हैं। इंटरनेशनल मार्केट में आज ब्रेंट क्रूड का भाव $75 प्रति बैरल के भी नीचे स्लिप कर गया है, और इसका सीधा असर आने वाले दिनों में भारत सहित दुनिया भर में पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर पड़ेगा, जिससे महंगाई से थोड़ी राहत मिल सकती है। चाइना से खबर आ रही है कि चाइना के शहरों में अब इंसानों की जगह रोबोट्स कर रहे हैं डिलीवरी। टेक्निक के मामले में चाइना ने आज एक और बड़ा माइलस्टोन हासिल कर लिया है। चाइना के कई बड़े और हाईटेक शहरों में आज से कमर्शियल लेवल पर रोबोटिक डिलीवरी की शुरुआत हो गई है। इसका मतलब है कि अब खाना, ग्रोसरी और कुरियर पहुंचाने के लिए कोई डिलीवरी बॉय नहीं, बल्कि पूरी तरह से ऑटोमेटिक रोबोट्स और बिना ड्राइवर वाली गाड़ियां सड़कों पर दौड़ रही हैं। और उधर आपने सुना ही है, वेनेजुएला से खबर आ रही है, बुधवार को वेनेजुएला की में भीषण भूकंप आया था। आज शुक्रवार को वहां राहत और बचाव कार्य अपने सबसे बड़े स्तर पर पहुंच गए हैं। आज सुबह से ही इंटरनेशनल रेस्क्यू टीमें और मलबे हटाने वाली हैवी मशीन्स ग्राउंड पर काम कर रही हैं। दुनिया के कई देशों से आज वेनेजुएला के लिए मेडिकल हेल्प और खाने पीने की सप्लाई की खेप रवाना की गई है। इस आपदा में अब तक कम से कम 188 लोगों की मौत हो चुकी है, यानी कि 188 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि 1500 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। आशंका जताई जा रही है कि मरने वालों की संख्या और बढ़ सकती है। काराकास और पास के तटीय शहर ला ग्वायरा में ढही इमारतों के मलबे से नीचे से लोगों की मदद के लिए पुकार सुनाई दे रही है। वहीं कई लोग बेघर हो गए हैं, जबकि क्षतिग्रस्त और असुरक्षित इमारतों में रहने से डरे लोग सड़कों पर रात गुजारने को मजबूर हैं। आपको बता दें कि अमेरिका भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के मुताबिक पहले 7.2 तीव्रता का अर्थक्वेक आया, जिसके कुछ ही सेकंड बाद 7.5 तीव्रता का इससे भी अधिक शक्तिशाली भूकंप आया, और दोनों भूकंप धरती की सतह के काफी करीब आए, जिससे भारी तबाही हुई। और बुधवार को स्थानीय समय अनुसार 6:04 पर आया था। खेल की कुछ खबरें आपको सुना दें। फीफा वर्ल्ड कप में इक्वाडोर ने शानदार वापसी करते हुए जर्मनी को 2-1 से हरा दिया। इसी के साथ इक्वाडोर ने फीफा वर्ल्ड कप के नॉकआउट स्टेज में अपनी जगह बना ली है, और अब उसका सामना अगले दौर में इंग्लैंड से हो सकता है। हालांकि हारने के बाद भी जर्मनी ग्रुप ई में पहले स्थान पर कायम है, वहीं आइवरी कोस्ट दूसरे और इक्वाडोर अब तीसरे स्थान पर है। यही थे आज के प्रमुख समाचार। समाचार समाप्त हुए।
2: This is Leica Radio. Tasty track of the hour brought to you by Coca Noodles.

जी हाँ, ये है आपका मनपसंद लाइका गोल्ड इन ग्रेटर लंदन एंड लाइका रेडियो इन मिडलैंड्स। और इस शो में रितु शर्मा है आपके साथ, सिटिंग इन फॉर रवि शर्मा जी। और ये समय है चिंतन का, तो चलिए करते हैं आज के चिंतन की शुरुआत एक छोटी सी कहानी के साथ। एक बार की बात है, एक धोबी और उसका बेटा अपने गधे के साथ बाजार जा रहे थे। तीनों पैदल चलकर जा रहे थे, तभी रास्ते में उन्हें कुछ लोग मिले और उन्हें देखकर हंसने लगे। बोले, देखो कितने बेवकूफ लोग हैं, पास में गधा है फिर भी दोनों पैदल चल रहे हैं। धोबी को लोगों की बात चुभ गई, उसने तुरंत अपने बेटे को गधे पर बिठा दिया और खुद पैदल चलने लगा। थोड़ी दूर आगे जाने पर कुछ बुजुर्ग लोग मिले, उन्होंने धोबी के बेटे को गधे पर बैठे हुए देखा और गुस्से में बोले, कैसा कलयुग आ गया है, देखो तो आज का नौजवान लड़का आराम से गधे पर बैठा है और बूढ़ा बाप पैदल चल रहा है, कितनी शर्म की बात है। ये सुनकर बेटा शर्मिंदा हो गया और चुपचाप गधे से उतर गया और उसने पिता से कहा, पिताजी आप बैठ जाइए, और अपने पिता को गधे पर बिठा दिया। कुछ दूर और चलने पर कुछ महिलाएं मिली, वो धोबी को देखकर कानाफूसी करने लगी। देखो देखो इस निर्दय बाप को, खुद तो मजे के साथ गधे पर बैठा है और इस छोटे से बच्चे को पैदल घसीट रहा है। अब धोबी और उसका बेटा दोनों परेशान हो गए, उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। आखिर में उन्होंने सोचा कि लोग खुश रहें, इसलिए दोनों ही गधे पर बैठ गए। और जैसे ही कुछ दूर चलकर गांव के मोड़ पर पहुंचे, वहां खड़े लोग चिल्लाने लगे, अरे जालिमो, उस गरीब जानवर पर तो रहम करो, दो दो हट्टे कट्टे लोग एक छोटे से गधे पर लदे हुए हो, तुम लोग को शर्म नहीं आती, तुम लोग तो इस बेचारे की जान ही ले लोगे। थक हार कर धोबी को समझ आ गया कि आप कुछ भी कर लो, दुनिया को पूरी तरह खुश नहीं कर सकते। ये कहानी सिर्फ इसी को बताने के लिए थी कि आप चाहे कुछ भी कर लीजिए, दुनिया को आप कभी भी पूरी तरह खुश नहीं कर सकते। लोगों का काम सिर्फ कमियां निकालना और बातें बनाना है। अगर आप लोगों की बातों के डर से अपने फैसले बदलेंगे, तो यकीन मानिए कभी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो जनाब, दुनिया की परवाह छोड़िए, वही कीजिए जो आपके दिल को और आपके विवेक को सही लगे। क्योंकि किसी ने कितना सच कहा है कि कुछ तो लोग कहेंगे, क्योंकि लोगों का काम है कहना।

0: चिंतन। आज की कहानी, आज का चिंतन हमें यही सिखाता है कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। देखिए कितनी सुंदर चार लाइनें किसी ने लिखी हैं कि सुनो मुसाफिर चलते जाना, दुनिया का काम है राह भुलाना। तुम हंसोगे तो वो जलेंगे, तुम रोगे तो वो हंसेंगे। तुम कुछ भी कर लो इस दुनिया में, वो हर बात में नुक्स निकालेंगे। लोगों का क्या है, वो तो बोलेंगे, तुम्हारी कीमत तराजू में तोलेंगे। पर तुम अपनी पहचान बनाए रखना, भीड़ में भी अपना वजूद बनाए रखना, क्योंकि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। छोड़ो बेकार की बातों में कहीं बीत ना जाए रहना। ये सिर्फ एक गाना नहीं बल्कि जिंदगी का एक बहुत बड़ा लेसन है। आनंद बख्शी ने इस गीत को लिखा है, किशोर दा ने इसे गाया है और ये गीत अमर हो गया है। हर किसी को यही परेशानी है आज के दिन में कि लोग क्या कहेंगे। बस उन्हीं लोगों के अकॉर्डिंग लोग अपना जीवन जीते हैं। कभी कभार कुछ नहीं भी होता है, लेकिन लोगों के दिखावे में बस जिए जा रहे हैं, जिए जा रहे हैं। आप चाहे अच्छा करें या बुरा, लोग हमेशा आपकी आलोचना करने या फिर अपनी राय देने के लिए तैयार बैठे रहेंगे। लेकिन आप याद रखिए, अगर आप लोगों की तारीफ से खुश या उनकी बुराई से दुखी होने लगेंगे, तो यकीन मानिए आपकी खुशी का रिमोट कंट्रोल दूसरों के हाथ में चला जाएगा, आपके हाथ में नहीं रहेगा। लोग सिर्फ बोलते हैं, आपके बिल भरने या आपके सपने पूरे करने वो नहीं आएंगे। इसलिए उनकी बातों को शोर समझकर फिल्टर कर दीजिए। जब तक आपका दिल साफ है, आपके इरादे सही हैं, तब तक आपको किसी को सफाई देने की कोई जरूरत नहीं है। बस इस गाने को भूल जाइए और जो आपके दिल में आए, जो आपके लिए सही हो, जो आपके परिवार के लिए सही हो, वही कीजिए और लोगों की बातों पर ध्यान मत दीजिए। यही था आज का चिंतन, यही था आज का विचार। आपके खूब सारे मैसेजेस मुझे मिले हैं। आज की कहानी आपको पसंद आई है। कहानी छोटी सी थी लेकिन उसमें मैसेज अच्छा था, इसीलिए छोटी छोटी कहानियां लेकर आती हूँ ताकि मैसेज समझ में आए। तो आपको पसंद आया, बहुत अच्छा लगा। राजीव जी थैंक यू। कहते हैं हमें बाहरी दुनिया को देखने से पहले खुद को अंदर से देखना चाहिए और उसके अनुसार अपने कर्तव्यों को निभाना चाहिए। बिल्कुल सही कहा राजीव जी आपने, हमेशा ही आप भी बहुत अच्छे विचार हमारे साथ शेयर करते हैं। जासू जी कहती है बिल्कुल सच है। जगदीश जी सुन रहे हैं बुशी में। रोहित का कहना है बिल्कुल सही कहा आपने। अनिल भट्ट जी थैंक यू, आज का चिंतन आपको पसंद आया। थैंक यू। गिरीश जी कहते हैं आपके चिंतन हमें पसंद आते हैं और आपने ये भी लिखा है कि सबको संतुष्ट करने से अच्छा है आप अपने आप को संतुष्ट करें और जीवन एक सुखी जीवन जीने के लिए यही सबसे बड़ी बात है। क्योंकि अगर आपके अंदर सेटिस्फेक्शन नहीं होगा तो आप जीवन ठीक से नहीं जी पाएंगे। और एक बात याद कर रखिए कि समय से पहले और किस्मत से ज़्यादा किसी को भी नहीं मिलता। तो बस खुश रहिए ना, फालतू की बातों को जाने दीजिए, क्यों अपनी सेहत खराब करते हैं। दिनेश सॉरी जी थैंक यू, आज का चिंतन आज का मैसेज आपको पसंद आया। रमा जी हॉन चर्च में सुन रही हैं, हमारे साथ दे रही हैं। इसके अलावा और भी मैसेज हैं, सह जी, महेंद्र बजारिया, फरीदा जी थैंक यू आपके मैसेज के लिए, नलिनी जी थैंक यू, मानू जी, तृप्ति, रंजन जी, सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जानती हूँ आप सब चिंतन के प्रेमी हैं और रवि शर्मा जी के साथ 50 से ज़्यादा, अब तो 50 से ऊपर हो गए हैं, सालों से चिंतन सुनते आ रहे हैं और मेरी भी कोशिश रहती है कि कुछ ऐसा लेकर आऊँ जो आपको पसंद आए और आपने आज पसंद किया है, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए सुनवाते हैं आपको बहुत ही खूबसूरत सा गाना 80s की फिल्म से।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: लेकिन गाना बजाने से पहले याद दिला दूं कि आज वन पाउंड के बदले में आपको मिलेंगे 124.2 भारतीय रुपए और ये ट्रांसफर आपको करवाना होगा बाय SBI ब्रांच ऑनलाइन बाय यूजिंग द योनो SBI UK मोबाइल ऐप के थ्रू। लेकिन याद रखिए जून के खत्म होने से पहले पहले आपको मौका मिल रहा है जीतने का 75 pounds का वाउचर एवरी डे व्हेन यू सेंड ओवर 1000 pounds एंड ऑल्सो अ 1 gram गोल्ड कॉइन एवरी वीक व्हेन सेंडिंग ओवर 2000 pounds। टर्म्स एंड कंडीशंस डू अप्लाई।
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.
2: Ye hai
3: Leica Radio.
2: Leica Radio.
1: Football score updates brought to you by Rack Law Solicitors, specialists of family law, immigration law, property, civil disputes, wills and probate and for other legal requirements.
0: तो आज जापान स्वीडन के बीच मैच होगा, पैराग्वे और ऑस्ट्रेलिया की टीम्स मैच खेलेंगी ग्रुप डी से और इसके अलावा ग्रुप वन में सेनेगल और इराक की टीम्स मैच खेलेंगी। लेकिन याद दिलाने कि आप भूलिएगा नहीं अपना 15 मिनट्स का फ्री लीगल एडवाइस विद अवर स्पॉन्सर्स रैक लॉ इफ यू मेंशन लाइका।
1: This update was sponsored by Rack Law Solicitors. Call 0203 345 2000 or visit raklaw.co.uk.
2: ये है
1: Leica Radio.
4: लिस्टर, इतना सस्ता डील देखा है कभी?
5: नहीं तो चलो फाल्कन कैश एंड कैरी।
4: समारा ब्लैक टी 1 kg 3.99, एलिफेंट मीडियम आटा 25 kg 14.99, फाल्कन ब्राउन शुगर 3 kg 3.99, लैला बासमती राइस 10 kg 11.99, सुहाना खमन ढोकला 500 ग्राम 1.99, फाल्कन रेड लेंटिल्स 1.5 kg 24.399, पार्ले जी मल्टीपैक बिस्किट 7.99 ग्राम 1.99, फाल्कन लेमन जूस 250 ml 3 for 1, फाल्कन कैश एंड
5: 82 Assistant Street, LE12JU, या Rowlett Hill, LE54UN.
4: Big deals, big savings, while stocks last.
6: Southall Travel, 7 days a week. Southall Travel, 24 hours a day, we're at our peak.
7: Southall Travel invites you to the beautiful city of Dubai. Enjoy the great shopping experience, luxury hotels, water sports, golf courses, gold souk, desert safaris and dhow cruise. There's never been a better time to go to Dubai.
8: Call 0208 574 8410. 0208 574 8410.
6: Southall Travel can take you there.
9: Southall Travel, at all protected.
10: Mum, I'm outside. Yes, literally just landed.
11: Wait. How are you calling already? I'm still searching for Wi-Fi.
10: Oh, I'm on Simzy. Downloaded the eSIM back at Heathrow.
11: And you didn't pay those massive roaming charges?
10: Not a penny extra. Just a cheap local data plan. I even kept my UK number for bank alerts.
12: Heading home for the holidays? Skip the roaming drama. Get instant 5G data in India and 100 plus countries. Download the Simzy app today. Simzy, your global flow. T's and C's apply.
13: जदों भी कॉमेडी मूवी दी गल हुंदी है तां एक मूवी दा नाम हमेशा आंदा है, ओ मूवी जिन्हें सब नू हसा हसा के लोटपोट कीता।
14: की कह रहे हो?
13: ओ मूवी जिदी स्टोरी ने ब्रेन रॉट कीता।
14: की कह रहे हो?
15: गिप्पी ग्रेवाल, बिन्नू टिल्लो, सरगुन मेहता फिर तो लेके आ रहे ने पंजाबी सिनेमा दी सब तो वड्डी फ्रेंचाइज कैरी ऑन जट्टा 4, जिथे एडवोकेट टिल्लो फिर कहेंगे
16: ओए टिल्लो ने काला कोट एवें नहीं पाया।
13: दिस 26 जून कैरी ऑन जट्टा 4 दे नाल थिएटर्स होंगे लाफ्टर दा स्टेडियम, क्योंकि ये सिर्फ फिल्म नहीं ये लाफ्टर दा फेस्टिवल है।
17: ZTV HD पर देखिए नई कहानी तू ही रे दिल में।
18: स्वाति, जब से लाइफ में आई है लाइफ ना कंप्लीट सी लगती है।
19: इतना ही प्यार हमेशा रहेगा ना संजय?
20: मगर नियति को क्या कुछ और ही है मंजूर।
21: वृंदा तेरे सपनों का राजकुमार अब सच में तेरा होने जा रहा है।
20: 3 मासूम जिंदगियां किस्मत के जाल में।
17: तू ही रे दिल में रोज शाम 5 बजे ZTV HD पर, अवेलेबल ऑन Sky 707, Sky Glass 714, Virgin Media 809, BT 394 एंड Z5 app।
22: बी पार्ट ऑफ historic grand opening.
23: Experience the newly inaugurated BAPS Swaminarayan Mandir in Paris. A once-in-a-lifetime spiritual journey.
22: Travel with your family and witness this divine occasion along with the Eiffel Tower, Seine River Cruise and a Paris City Tour.
23: Departure 5th of September. Call now on 0203-773-633.
22: Mantra Holidays. What's your travel mantra?
1: New hits on Leica Radio.

0: हमारी अनीता जी कहती हैं कि उनकी फ्रेंड का ये फेवरेट गाना है, तो चलिए आपकी फ्रेंड को डेडिकेट करते हैं। वैसे ये फिल्म भी मुझे बहुत अच्छी लगी थी, इसमें पद्मिनी कोल्हापुरी का कैरेक्टर बहुत ही अच्छा था और अनिल कपूर बहुत बुद्धू बने थे, उन्होंने भी बहुत अच्छा ये रोल निभाया था। और मुझे याद है उनका नाम प्रेम प्रताप पटियालाई वाला, क्या नाम रखा था कमाल की फिल्म थी। और उससे पहले आपने मासूम फिल्म का गीत सुना। आपको गाने अच्छे लग रहे हैं तो भाई मेरी कोशिश यही है कि अच्छे अच्छे गाने सुनवाऊं। और वैसे भी आज फ्राइडे का दिन है, वीकेंड की शुरुआत होने वाली है, तो बस मजे से आराम के साथ मौसम को एंजॉय करते हुए लस्सी, मैंगो शेक, मिल्क शेक, जो भी शेक है, जो भी आपको पसंद है, जो भी आइसक्रीम्स पसंद है, उनका भरपूर मजा ले लीजिए, क्योंकि गर्मी में ठंडी चीज खाने का मजा ही कुछ और है। वैसे तो हमारे यहाँ हमेशा ठंडक रहती है, तो हम क्या खाए नहीं क्या? हम तो सर्दियों में भी आइसक्रीम खाते हैं, मिल्कशेक पीते हैं, लेकिन गर्मी में पीने का मजा कुछ अलग ही है। तो बहुत मजे के साथ एंजॉय कीजिए। फारूक जी, आपने भी ये मैंगो शेक की फोटो भेज दी है, अब कर दी ना गड़बड़ी, कितना पानी आ रहा है इस मैंगो शेक के ग्लास को देख देख कर। अब सिर्फ देख सकती हूँ, पी तो सकती नहीं हूँ। एनीवेज, चलिए बढ़ जाते हैं आगे और अब आपको थोड़ा पीछे लेकर चलते हैं। यस, पीछे एक बहुत ही खूबसूरत गीत।
1: दिस इज द Leica रेडियो नेटवर्क अक्रॉस लंदन, मैनचेस्टर एंड द मिडलैंड्स। फील गुड ट्रैक brought to you by Dairy Valley.
2: Soft and tender, like grandma's warm hug, Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: लीजिए इस गाने को हम प्रदीप पोपट जी को डेडिकेट करते हैं और उसके साथ साथ हमारे महेंद्र बजारिया जी, आप दोनों को ये गाना बहुत अच्छा लगा, चलिए थैंक यू आपके नाम पर जाता है। एंड सीमा क्रॉइडन से आपने भी फोटो भेज दी है लस्सी की, लस्सी है या ठंडा दूध आई डोंट नो, लेकिन उसने मुझे वो हमारे शहर वाली गाढ़ी गाढ़ी लस्सी की याद दिला दी है, जिसके ऊपर बहुत मोटी मलाई की एक परत होती है और अंदर होती है गाढ़ी गाढ़ी लस्सी। हाय हाय कहाँ याद दिला दी आपने मुझे, कहाँ पहुँचा दिया। अब पता नहीं कब वो लस्सी पीने का मौका मिलेगा, लेकिन यादों में खो गई उसकी। और आजकल इतनी गर्मी है, खाना बनाना तो जैसे कितना बोझ लग रहा है, तो आप भी बता सकते हैं कि कुकिंग करने में इतनी गर्मी में मजा आ रहा है या फिर आपको लग रहा है कि हे भगवान ये गर्मी कब खत्म होगी। बताना चाहे तो आप हमारा नंबर तो जानते ही हैं, लेकिन चलिए हम भी आपको कुछ बता देते हैं।
1: Feel good track brought to you by Dairy Valley.
2: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
3: मनोरंजन विद रवि शर्मा।
1: लाइका एक्स्ट्रा पॉडकास्ट अपडेट।
0: तो हम आपको बता देते हैं कि लाइका एक्स्ट्रा का नया एपिसोड ड्रॉप हो चुका है और इस बार का टॉपिक है ट्रेडिशंस एंड ताबूज, और इसे होस्ट किया है रेडियो वाली ने। लाइका एक्स्ट्रा पॉडकास्ट अवेलेबल है स्पॉटिफाई, यूट्यूब, अमेजन और जितने भी मेजर स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स हैं, कहीं पर भी जाकर आप लाइका एक्स्ट्रा पॉडकास्ट सुन सकते हैं।
1: लाइका एक्स्ट्रा इज हियर। गेट ऑल द लेटेस्ट ट्रैवल अपडेट्स फॉर द मिडलैंड्स एट ब्रेकफास्ट एंड ड्राइव। दिस इज द लाइका रेडियो नेटवर्क, द लार्जेस्ट एशियन कमर्शियल रेडियो नेटवर्क इन द यूके, ब्रॉडकास्टिंग इन ग्रेटर लंदन, ग्रेटर मैनचेस्टर एंड द मिडलैंड्स। ट्यून इन व्हेरेवर यू आर इन द वर्ल्ड बाय डाउनलोडिंग द लाइका रेडियो मोबाइल ऐप। लिसन लाइव और लिसन बैक टू योर फेवरेट शोज और लॉग ऑन टू laikaradio.com एंड लिसन वाया द वेबसाइट। इफ यू लाइक व्हाट यू हियर, डू टेल अस, ईमेल अस info@laikaradio.com और यू कैन एडवर्टाइज ऑन द लाइका रेडियो नेटवर्क बाय ईमेलिंग sales@laikamedia.com. This is Leica Radio.
4: Location, location, location.
5: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
4: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas.
5: Located in Dubai, in a prime location for high appreciation.
4: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
5: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
4: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
5: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Danube. Prime location,
4: high appreciation
5: in Dubai.
6: The theatrical blockbuster Mrs. Kapoor's Daughter's Wedding is back for a third season. This time there's a wedding, a secret and a murder.
7: OMG!
6: Mrs. Kapoor's Daughter's Wedding 3, The Murder Mystery. As the celebrations begin, the truth turns deadly.
7: Murder Mystery!
6: That's in Leicester on the 4th of July at the Curve Theatre and Birmingham on the 26th of July at the Alexandra Theatre. Get your tickets now before the killer gets away. NKDW.co.uk. Exclusive radio partner. Like a radio.
8: CTV and C5 proudly present Hamari Ram, produced by Felicity Theatre. India aur Dubai mein houseful shows ke baad, ab pehli baar London mein, dekhiye Ashutosh Rana ko as Ravan aur Rahul R. Bhuchar ko Prabhu Shri Ram ke roop mein. Ramayan ki undiscovered stories live on stage 9 se 12 July, Eventim Apollo, Hammersmith. Hamari Ram.
9: Book your tickets now on eventimapollo.co.uk and use code Hamari Ram 10 for a 10% discount on all shows and tickets.
8: Exclusive radio partner, like our radio.
10: Transfer money home and turn every transfer into a chance to win while making your money go even further with SBI UK.
11: Transfer £1,000 or more in a day to enter our daily draw for a £75 voucher.
10: Transfer £2,000 or more in a week to enter our weekly draw for a 1 gram gold coin.
11: Transfer now using the Yono SBI UK app, online banking or simply visit your nearest branch.
10: And that's not all. Enjoy zero transfer fees and competitive exchange rates.
11: More value, more rewards, more reasons to choose SBI UK.
10: Offer valid from the 4th of May to the 30th of June 2026. Entries open to UK residents 18 plus. No entry fee and purchase required. Terms and conditions apply. Visit sbiuk.statebank for details. SBI UK Limited is authorised by the PRA and regulated by the FCMPRA.
7: Pepe's Piri Piri is firing up its 258th store at 3 Tons Parade on Stafford Road, Wolverhampton. Get ready for flame-grilled chicken, mouth-watering burgers, wraps, rice boxes, and the bold Pepe's flavor you love. Now serving at Wolverhampton 3 Tons Parade. Pepe's Piri Piri. Taste the flame.
12: Like a Radio Network. Proud hospitality partner, Ragasan.
13: मेरे पापा को गुलाब जामुन बहुत पसंद है.
14: Order online at pujasweets.com. From barfi, laddus, gulab jamun to samosa and gathia. From catering starters to dessert. Pooja Sweets and Savories.
15: अभी कॉल कीजिए 0116-202-1222 or visit Melton Road, LE4-5EA.
14: Pooja Sweets and Savories.
16: स्ट्रीट फूड का असली मजा लो क्वालिटी स्ट्रीट फूड लेस्टर पर. ट्राई कीजिए क्रिस्पी पानी पूरी, स्पाइसी वड़ा पाव और डिलीशियस पाव भाजी. सब कुछ फ्रेश और टेस्टी. लाइट खाना है तो हमारे चीजी सैंडविचेस और किड फ्रेंडली ट्रीट्स ट्राई कीजिए. तो मिलते हैं 62-64 बेलग्रेव रोड, LE4-5AS. कॉल ऑन 0116-332-5100 और मेन्यू ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं. क्वालिटी स्ट्रीट फूड लूटन एंड विमली में तो है, लेकिन अब असली इंडियन फ्लेवर्स लेस्टर में.
17: Location, location, location.
18: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
17: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas.
18: Located in Dubai, in a prime location for high appreciation.
17: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
18: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
17: And the best part, townhouses and villas, Greens, start from just £711,000.
18: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Danube. Prime location.
17: High appreciation.
18: In Dubai.
19: Your father has built his business on trust. Your son will look for it online. No website, no future. Secure your legacy. Visit HeartyHanks.com today. Hearty Hanks. Build your future before someone else does. Visit HeartyHanks.com today.
12: Did you know that Leica Gold is the UK's first Asian retro music station? Listen to Bollywood classics 24/7 with live presenters on 10:35 a.m. and DAB in London and on the Leica Radio mobile app. Making summer feel better on the Leica Radio Network.

0: ये थी दमदार आवाज सुखविंदर साहब की, सुखविंदर सिंह की। और इनकी आवाज जहां से शुरू होती है, बहुत सारे सिंगर्स की आवाज वहां खत्म हो जाती है जहां से इनके सुरों की शुरुआत होती है। सौदागर फिल्म से लिया था ये गाना, जिसे सुभाष घई ने बनाया था, जिसमें दिलीप कुमार, राजकुमार बड़े बड़े दिग्गज कलाकार थे और ये फिल्म काफी हिट भी हुई थी। आप हमारा साथ देते जा रहे हैं, अनिल भट्ट जी स्वागत है आपका इस शो में, और ये आप दिला दूं कि ऋतु शर्मा है आपके साथ, सिटिंग इन फॉर रवि शर्मा जी।
1: हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ सरिता सबरवाल। एवरी वीकेंड 4 till 7 बहुत सी मीठी मीठी बातें आपके साथ शेयर करती हूँ। सैटरडे एंड संडे मेरे साथ ही रहेंगे।
2: Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
0: तो आज 1 pound आपको देगा 124 भारतीय रुपए, 366 पाकिस्तानी रुपए and 162 बांग्लादेशी टकास।
3: Leica Radio.
2: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code LEICA. Download LemFi now. T's and C's apply.
4: Manoranjan with Ravi Sharma.
3: LEICA Radio.
2: Gold Rate is brought to you by Ram Jewelers, Belgrave Road, Leicester. This is LEICA Radio.
0: So gold rate is 98.60 pounds per gram.
2: Ram Jewelers, specializing in diamond jewelry, platinum jewelry, 22 karat gold, white gold jewelry, coins and gold bullion bars. Visit Ram Jewelers on 116 Belgrave Road, Leicester, or call 0116-266-4278.
3: LEICA Radio.
5: ये है लाइका रेडियो।
6: Bond Travel proudly presents Yatra Tours 2026.
7: Discover Kailas Mansarovar, Chardham, Amarnath, Sri Lanka with Ayodhya, Ayodhya with Kashi, the Golden Temple Amritsar and more.
6: Book before the 31st of October and get £150 off Kailash or £100 off any other Yatra Tour.
7: Also explore 2026 cruises
6: from Alaska to the Caribbean, the Mediterranean, Japan and Korea. Visit us at 5 Melton Road, Leicester, or call City Bond Travel on 01162 167 225. We're at all protected.
8: Welcome to the jungle.
9: Film बिल्कुल फेक।
8: हमारी फिल्म आर्मी वाली,
10: और उसके लिए आप सभी को ट्रेनिंग की जरूरत है।
9: डेंजर एकदम रियल और सर्वाइवल स्किल्स जीरो।
8: और स्टार कास्ट है
9: अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, अर्शद वारसी, परेश रावल एंड यू स्टार कास्ट ब्रिंग जंगल मैडनेस टू सिनेमास।
8: अन्ना कभी बाप जन्म में भी किसी ने गन पकड़ा था क्या?
9: वॉच वेलकम टू द जंगल इन सिनेमास नाउ।
8: तुम दोनों को तो ऐसे फटके मारूंगा ना मैं
11: किस लिए फिल्म में।

0: बासु चटर्जी की फिल्म चित चोर से था ये गाना। अमोल पालेकर और जरीना बहाव इस फिल्म में थे। और आपको बता दें कि जरीना बहाव बहुत सारी फिल्मों में तो नजर आई है, लेकिन कुछ कुछ फिल्मों में उन्होंने काम किया है और वो फिल्में अच्छी चली हैं। मुझे याद है किसी बड़े डायरेक्टर ने उनसे कहा था कि तुम्हारा चेहरा हीरोइन वाला नहीं है, इसलिए तुम हीरोइन नहीं बन सकती हो। लेकिन जरीना बहाव ने उन्हें झुटला दिया, हीरोइन भी बनी और उनकी फिल्में हिट भी रहीं। और आजकल भी वो काफ़ी एक्टिव हैं, फिल्मों में, टेलीविजन में लगातार काम कर रही हैं। अभी इनकी एक नई फिल्म आने वाली है, दरअसल वो प्रभास की फिल्म है जो तेलुगु के बड़े स्टार हैं। उनकी फिल्म है द राजा साहब, उसमें भी इन्होंने काम किया है। और अभी इनकी फिल्म आई थी रजनी की बारात, तीसरी बेगम जाट, जिसमें आप सब ने इन्हें देखा होगा। और अभी हाल फिलहाल में ही जरीना जी से जब बात की गई तो उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया कि आजकल वो बॉलीवुड से ज्यादा तेलुगु और साउथ की फिल्मों में काम करना पसंद कर रही हैं, क्योंकि उनका मानना है कि साउथ की फिल्मों में आज भी पारिवारिक मूल्यों और फैमिली ड्रामा को अहमियत दी जाती है और बड़े ही आराम के साथ मुंबई में अपने पति और बच्चों के साथ जीवन बिता रही हैं। जरीना बहाव और अमोल पालेकर की फिल्म से लिया था ये गाना। उससे पहले लता जी की आवाज में मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए, अपने जमाने का सुपरहिट गीत। आप सुन रहे हैं लाइका रेडियो नेटवर्क, जहां पर यह है लाइका गोल्डन ग्रेटर लंदन एंड लाइका रेडियो इन मिडलैंड्स। और मैं ऋतु शर्मा सिटिंग इन फॉर रवि शर्मा जी। गुड आफ्टरनून।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: तो याद दिला दें एक बार फिर से कि भारत पैसा भिजवाना चाहते हैं वाई SBI ब्रांच ऑनलाइन और बाय यूजिंग द योनो SBI UK मोबाइल ऐप। देन आज 1 pound के बदले में आपको मिलेंगे 124.35 भारतीय रुपए। लेकिन ये ट्रांसफर आपको हमेशा की तरह वही ब्रांच या ऑनलाइन या ऐप के थ्रू करवाना पड़ेगा। लेकिन जून के खत्म होने से पहले आपको 75 pounds जीतने का मौका मिल सकता है एवरी डे व्हेन यू सेंड ओवर 1000 pounds, ऑल्सो अ 1 gram गोल्ड कॉइन एवरी वीक व्हेन सेंडिंग ओवर 2000 pounds। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. Leica Radio.
2: लिस्टर, इतना सस्ता डील देखा है कभी?
3: नहीं तो चलो फाल्कन कैश एंड कैरी।
2: समारा ब्लैक टी 1 kg 399, एलिफेंट मीडियम आटा 25 kg 14.99, फाल्कन ब्राउन शुगर 3 kg 399, लैला बासमती राइस 10 kg 11.99, सुहाना खमन ढोकला 500 ग्राम 199, फाल्कन रेड लेंटिल्स 1.5 kg 24.399, पार्ले जी मल्टीपैक बिस्किट 7.99 ग्राम 199, फाल्कन लेमन जूस 250 ml 3 for 1, फाल्कन कैश एंड कैरी
3: 82 Assistant Street, LE12JU, या Rowlett Hill, LE54UN.
2: Big deals, big savings, while stocks last.
4: Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways, and food delivery services. Order your free Herald catalogue today. Call on 0208-507-7900 or download the catalogue from heraldplastic.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly, and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries, and with disposable supplies to trade. Visit heraldplastic.com.
5: Location, location, location.
6: In real estate, location is everything, and this one is a winner.
5: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
6: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
5: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
6: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
5: And the best part, townhouses and villas Greens start from just £711,000.
6: To book, call our London office on 02039635757. Greens by Danube. Prime location.
5: High appreciation.
6: In Dubai.
7: The theatrical blockbuster Mrs. Kapoor's Daughter's Wedding is back for a third season. This time there's a wedding, a secret and a murder.
8: OMG!
7: Mrs. Kapoor's Daughter's Wedding 3, The Murder Mystery. As the celebrations begin, the truth turns deadly.
8: Murder Mystery!
7: That's in Leicester on the 4th of July at the Curve Theatre and Birmingham on the 26th of July at the Alexandra Theatre. Get your tickets now before the killer gets away. NKDW.co.uk. Exclusive radio partner Leica Radio.
9: Come on, show.
8: Pepe's Piri Piri is turning up the heat. Pepe's Piri Piri on Belgrave Road, Leicester, with grills fired up and ready to serve your flame-grilled Piri Piri favourites. Pepe's Piri Piri, definitely worth a visit.
9: Think you might be overpaying for card payments? Most businesses don't realize until they compare. Send your latest statement to TW Pays and get a free comparison quote with the reply within 24 hours. Visit twpays.com/Leica. TW Pays, helping businesses keep more of what they earn.
10: Ek aitihasik ane divya avsar. Paris ma bhavya BAPS Swaminarayan Mandir na grand opening ma darshan no labh. Aap pavitra yatra ma jodao apna parivar sathe. Jyan madshe shanti, bhakti ane anand. અને સાથે આઈફિલ ટાવર, સેન રિવર ક્રુઝ અને પેરિસ સિટી ટૂર નો આનંદ માણો. ડિપાર્ચર 5 સપ્ટેમ્બર ના. મંત્રા હોલિડેઝ, કોલ કરો 0203-773-6333. મંત્રા હોલિડેઝ, વોટ્સ યોર ટ્રાવેલ મંત્રા?
11: ઇટ વોઝ જસ્ટ અનધર ડે, અ ફેમિલિયર ડ્રાઈવ થ્રુ ફેમિલિયર કન્ટ્રી, બટ ધેન જસ્ટ અરાઉન્ડ ધ કોર્નર કેમ ધ અનએક્સપેક્ટેડ. He'd let his speed creep a little too high as he approached a bend. And he was no longer driving at the right speed for the road. The scary thing is, he didn't even realize. Driving even a little too fast for the situation is a major cause of collisions, especially on country roads where you don't know what's around the corner. Think. Don't let your speed creep.
12: Pepe's, famous for flame-grilled marinated chicken with over 215 stores nationally. Download the Pepe's app where you can choose to have your order collected or delivered. Delivery is available in selected stores. Every first order on the Pepe's app, customers receive a 10% discount. Plus a chance to spin to win some fantastic prizes. Order at Pepe's today.
13: Did you know that Leica Gold is the UK's first Asian retro station? Playing Bollywood classics 24/7. And with your favourite presenters live. Get the tune-in details at LeicaGold.com. Artist of the Week is brought to you by our new podcast, Leica Extra. Stream it now and be a part of the conversation.

0: जितेंद्र और श्रीदेवी पर पिक्चराइज ये गाना फिल्म हिम्मत वाला से लिया था और मुझे याद है कि इस फिल्म के गीतों में क्या बड़े बड़े सेट्स लगे थे देखने का अलग मजा था। और ये जमाना चला गया जो वो सेट्स लगा के बड़े बड़े शानदार लंबे लंबे खूब सारे डांसर्स को साथ लेकर गाने शूट किए जाते थे। एनीवेज ये गाना जब फिल्म आई थी तो बहुत ही बड़ा हिट हुआ था। और आपको याद दिला दें कि इस तरह के अगर आप और भी गाने यानी कि 80s और 90s के गाने सुनना चाहते हैं, स्पेशली 90s के गीत सुनना चाहते हैं, तो भाई लेजेंडरी हरी हरन लंदन आ रहे हैं परफॉर्म करने के लिए और उनका शो है सोल इंडिया। ये होने वाला है एट द रॉयल फेस्टिवल हॉल सैटरडे को 4 जुलाई, रॉयल फेस्टिवल हॉल लंदन में सैटरडे 4 जुलाई को। टिकट्स अवेलेबल हैं एट southbankcenter.co.uk पर। जल्दी से टिकट्स बुक कीजिए। और इस शो के एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर्स हैं लाइका रेडियो नेटवर्क।
1: फील गुड ट्रैक ब्रॉट टू यू बाय डेरी वैली,
2: सॉफ्ट एंड टेंडर लाइक ग्रैंडमास वार्म हग। डेरी वैली पनीर इज मेड विद नेचुरल इंग्रेडिएंट्स एंड जीरो प्रिजर्वेटिव्स। विजिट dairyvalley.net।

0: इस खूबसूरत गाने को साहिर लुधियानवी ने लिखा था और इस गीत को गाने के लिए महेंद्र कपूर को फिल्म फेयर का बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर का अवार्ड मिला था। वैसे तो इस फिल्म के सारे गाने ही बड़े सुंदर हैं और आप सभी को बहुत पसंद है और इस गाने को सुनकर ढेरों मैसेजेस भी आए हैं। तो चलिए ये गाना मैं आप सभी के नाम पर करती हूँ, सुनील दत्त और विमी साथ में मुमताज बिथी की एक सुपरहिट फिल्म।
1: Brought to you by Derry Valley.
2: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
0: Like a radio. तो आगे बढ़ने से पहले हम आपको एक बार फिर से याद दिला दें कि भाई एक नाटक जिसके बारे में सभी जगह बातें हो रही हैं और खूब धूम मचा रहा है भारत में, 500 से ज़्यादा सुपरहिट शोज़, दुबई में बहुत सारे शोज़ सुपरहिट हो चुके हैं और अब लंदन आ रहा है, उसका नाम है हमारे राम। लाइका रेडियो नेटवर्क जी टीवी के साथ मिलकर आपके लिए लाए हैं माइथोलॉजिकल स्टेज शो जिसका नाम है हमारे राम और ये होने जा रहा है 9 जुलाई से 12 जुलाई के बीच में एट लंदन एवेंटिम अपोलो में, जिसमें आशुतोष राणा रावण बने हैं और राहुल भुच्चर ने राम का किरदार निभाया है। एक बहुत ही शानदार शो है और ज़रूर अपनी फैमिली, अपने बच्चों, घर के बुज़ुर्गों सबको लेकर आइए, क्योंकि जब मैंने इस नाटक के किरदारों से बात की, जो श्री राम बने हैं राहुल भुच्चर, जो शिव बने हैं तरुण खन्ना और जो रावण बने हैं आशुतोष राणा, उनसे जब मैंने बात की तो उन्होंने यही कहा कि सबको ये शो देखकर बहुत ही अच्छा लगेगा, क्योंकि इसमें आपको कुछ ऐसी चीज़ें देखने को मिलेंगी जो आपने सुनी तो होंगी लेकिन देखने का अंदाज, देखने का मज़ा कुछ अलग होता है। और हमारी जो 30 बहुत सारी रामायण है, उन सभी में से कुछ कुछ लेकर उन सभी को कंसल्ट करके इस नाटक को लिखा गया है और स्टेज पर किसी भी चीज़ को देखने का मज़ा ही कुछ अलग होता है। तो अगर आपने अभी तक टिकट्स बुक नहीं कराए हैं तो जल्दी कीजिए।
1: लाइका रेडियो
3: Holiday breaks are brought to you by Southall Travel.
0: तो हॉलीडे जाना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं, दुबई घूमने जा सकते हैं क्योंकि वहाँ के रेस्ट्रिक्शन सब हट चुके हैं। और दुबई के लिए अच्छी डील्स के लिए आप साउथॉल ट्रैवल को कॉल कीजिए ऑन 0208-574-8410 पर और ये सब कुछ एट ऑल प्रोटेक्टेड है।
3: Holiday breaks were brought to you by Southall Travel. Low prices for flights, hotels or holiday packages. Visit southalltravel.co.uk.
0: और लीजिए, हमारे विनोद जी का कहना है कि भाई हमने महेंद्र कपूर का गाना बहुत एंजॉय किया है तो आपका स्वागत है। और शेखर जी कहते हैं कि हाय गर्मी, हाय हाय गर्मी। तो गर्मी अभी आज तो है, आई थिंक नेक्स्ट वीक टेम्परेचर थोड़ा डाउन हो जाएगा, मतलब 26-25 में पहुंच जाएगा, बट मुझे ये नहीं पता, आई एम नॉट श्योर, बट मुझे ऐसे लग रहा है, मैंने कहीं सुना है कि शायद नेक्स्ट वीक अच्छा रहेगा, बट देखते हैं, मौसम तो फट से बदल जाता है, पता नहीं चलता, लेकिन बस यही है कि अब है तो है, क्या किया जा सकता है ना, एंजॉय करो जो भी है।
3: Get all the latest travel updates for the Midlands at breakfast and drive.
1: Ye hai Leica Radio.

0: Disha Basmati Rice, available now at all Falcon stores, Worli Superstore, Opus and all independent stores nationwide.
1: Welcome to the jungle.
2: Film bilkul fake.
1: Hamari film army wali.
3: और उसके लिए आप सभी को ट्रेनिंग की जरूरत है.
2: डेंजर एकदम रियल और सर्वाइवल स्किल्स जीरो.
1: स्टार कास्ट है
2: अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, अर्शद वारसी, परेश रावल एंड यू स्टार कास्ट ब्रिंग जंगल मैडनेस टू सिनेमास.
4: अन्ना कभी बाप जन्म में भी किसी ने गन पकड़ा था
2: क्या? वॉच वेलकम टू द जंगल इन सिनेमास नाउ.
5: पहले तुम दोनों को तो ऐसे फटके मारूंगा ना मैं
6: किस लिए फिल्म में.
7: Transfer money home and turn every transfer into a chance to win while making your money go even further with SBI UK.
8: Transfer £1,000 or more in a day to enter our daily draw for a £75 voucher.
7: Transfer £2,000 or more in a week to enter our weekly draw for a 1 gram gold coin.
8: Transfer now using the Yono SBI UK app, online banking or simply visit your nearest branch.
7: And that's not all. Enjoy zero transfer fees and competitive exchange rates.
8: More value, more rewards, more reasons to choose SBI UK.
7: Offer valid from the 4th of May to the 30th of June 2020. Entries open to UK residents 18 plus. No entry fee and purchase required. Terms and conditions apply. Visit sbiuk.statebank for details. SBI UK Limited is authorised by the PRA and regulated by the FCMPRA.
9: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान देखिए. दुबई की शान, फ्लाइट, होटल, साइट सींग, डेजर्ट सफारी, यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम. साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे. तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दिल डू द प्लानिंग. कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 0208574-8410. दैट्स 0208574-8410.
10: साउथ हॉल ट्रेवल एट ऑल प्रोटेक्टेड. Save the date, Friday 3rd to Sunday the 5th of July, and Indian summer is back.
11: Presented by Inspirate, exclusive radio partner, Leica Radio Midlands.
10: For sponsorship inquiries, call Leica Radio on 0116 471 0697
11: or sales at leicamedia.co.uk.
12: Tasty swag and sweet charm. Every spoon feels like a tropical warm. Make puri and amras or milkshake full. Taste itna pure, ho jaye happy soul.
13: Mango season has arrived. You're also with Jaimin's Mango Pulp. No added preservatives or colors. Only purest taste of mangoes.
12: Jaimin Foods Mango Pulp. Available now.
14: Leica Radio Network. Proud hospitality partner, Ragasan.
15: ZTV HD पर देखिए एक अनोखी प्यार की दास्तां. मिलिए 46 साल के बिजनेस टाइकून आर्यवर्धन और 19 साल की प्यारी सी अनु से.
16: तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है?
17: खुद से भी ज्यादा.
15: जिन्हें तकदीर चुपके से बांध रही है एक अनजाने रिश्ते में.
17: जो बात मेरे दिल में वही बात आर्य सर के दिल में भी है.
15: क्या ये नजदीकियाँ बदल देगी उनकी किस्मत की रेखा? देखिए तुम से तुम तक हर रात 8 बजे ZTV HD पर. अवेलेबल ऑन स्काई 707, स्काई क्लास 714, वर्जन मीडिया 809, VT394.
18: When you notice something wrong, it tends to grow and eventually take over to the point you can't really think of anything else. If something in your body doesn't feel right, the thought it could be cancer can play on your mind. Tests could put your mind at rest. Finding out sooner is always better. Your NHS wants to see you. Contact your GP practice.
14: 7 stations. One podcast, one mobile app. Advertise on Leica Radio Network, offering the largest Asian radio and digital content in the UK. Call 0116 471 0697 or sales at leicamedia.co.uk.
19: Tasty track of the hour, brought to you by Coca Noodles.

0: Track of the Hour sponsor by Coca Noodles. Quick, tasty, healthy flavors. Perfect for my busy day. Available in your nearest convenience store.
1: तो लीजिए, समय आ गया है हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट कमल प्रभाकर जी से बात करने का.
2: Women's cricket updates presented by Kamal Prabhakar and brought to you by TW Pays. If you're overpaying on your card terminal, we'll show you the truth and cut your costs.
3: And RoboThink, where children don't just use technology, they learn to build it. RoboThink.co.uk/Leica.
1: तो चलिए जानते हैं कमल जी से T20 Women's World Cup के बारे में. हेलो कमल जी.
4: हेलो रितु जी, कैसे हो? ठीक ठाक.
1: बढ़िया बढ़िया, आप सुनाए, बताइए.
4: बस देखो, अभी तो the weather is going to the next level. आज तो 37 है, it is so hot, humid. तो जितना पानी पी सकते हैं सभी पियो. और क्रिकेटर्स खासकर, they must have a break. They must have 2-3 breaks, you know, for the weather. Anyway, yesterday we had India played. You know, they game yesterday was with Bangladesh, and India came over and got 2 points, so they're on 6 points. South Africa took Netherlands, and South Africa beat Netherlands, and they got 2 points. Now they're level with India on 6 points each. ठीक है. तो आज जो है श्रीलंका स्कॉटलैंड के साथ खेल रही है दूसरी ग्रुप में, और आज श्रीलंका जीत गई तो उनको भी 2 पॉइंट मिल गए, तो वो 6 पॉइंट में चल जाएंगे. तो इट इज गोइंग टू गो विद द वेस्ट इंडीज के साथ सेम पॉइंट हो जाएगा. एंड एवरीथिंग टू प्ले फॉर, आई थिंक इज गोइंग टू बी अ फैंटास्टिक मैच. स्कॉटलैंड इज अ वेरी गुड साइड एज वेल, बट द वेदर इज सो हॉट. तो ये मैं क्या बताऊं आपको, पिकनिक भी नहीं कर सकते होगा, मतलब इतनी गर्मी है. सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस एज वी विल गिव यू ऑल द अपडेट्स एज टाइम जाएंगे. तो आपको कैसा लग रहा है कि अगर आपको जाना हो, वुड यू गो टू द मैचेस?
1: मैं तो चली जाऊंगी, मुझे क्रिकेट बहुत पसंद है.
4: वेरी गुड वेरी गुड. तो लेडीज का आई होप, लेट्स सी विल सी यू एट द ग्राउंड, सम ऑफ द ग्राउंड. But have a great afternoon and keep on listening to Leica Gold for all your updates with me, and see you soon.
1: Definitely. Bye-bye.
4: Thank you.
2: This update was brought to you by TW Pays. Visit twpays.com/Leica for a chance to win a free card terminal. T's and C's apply.
3: And RoboThink. This summer, give your child a head start in AI, robotics and coding. Places are limited. Save 10% on full week summer camp bookings with code LEICA10 at participating locations. Book now at robothink.co.uk. Terms apply.
5: मनोरंजन विद रवि शर्मा. Like a radio.
2: Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
1: तो आज 1 pound के बदले में आपको मिलेंगे 124.76 भारतीय रुपए, 367 पाकिस्तानी रुपए एंड 162 बांग्लादेशी टकास.
6: Like a radio.
2: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code LEICA. Download LemFi now. T's and C's apply. Listen wherever you are by downloading the LEICA Radio mobile app now. Gold Rate is brought to you by Ram Jewelers, Belgrave Road, Leicester. This is LEICA Radio.
1: So gold rate is 98.6 pounds per gram.
2: Ram Jewelers, specializing in diamond jewelry, platinum jewelry, 22 karat gold, white gold jewelry, coins and gold bullion bars. Visit Ram Jewelers on 116 Belgrave Road, Leicester, or call 0116 266 4278.
7: This super hit song is proudly sponsored by Tilda Basmati Rice. Discover the serious delicious possibilities with Tilda.

मेला में जब आएगा सावन का महीना, वो हुस्न भी क्या हुस्न है जो इश्क ना जाने, दिलदार को और यार को बिल्कुल ना पहचाने, मेरी वफा एक दिन कुछ ऐसा

0: 1, 2, 9, 11.
1: क्या मूवी थी तूफान। इसमें एक चीज मैंने नोटिस की कि किशोर कुमार जी का एक फाइनल गाना था इस फिल्म में। ये तो मनहर उदास जी हैं फॉर अमिताभ बच्चन, बट द टाइटल ट्रैक आया तूफान वॉज द लास्ट सॉन्ग किशोर कुमार सैंग फॉर एन अमिताभ बच्चन मूवी बिफोर हिज डेथ। एंड डिस्पाइट हिज मासिव कॉन्ट्रीब्यूशन, किशोर कुमार's name was accidentally omitted from the final credit scroll. Can you believe that? Did you know that? ये फिल्म थी तूफान और अमिताभ बच्चन जी की फाइनल ड्यूअल रोल का किया था इन्होंने ट्विन ब्रदर्स एंड डायरेक्टेड बाय केतन देसाई। उनके लिए भी एक आखिरी कोलैबोरेशन थी।
2: Another huge giveaway is coming. Like a Radio Network.
1: I love this song. आशा जी ने क्या गहरी चाल, फिल्म का गाना है 1973 का, पर सुनिएगा।

Hope you're enjoying all the songs. Next one, हम एक स्पेशल गाना डेडिकेट करते हैं. ये शाम भीगी भीगी है, उसका जो शूटिंग हुआ था उस गानों का वो बारिश में हुआ होगा. जो नेक्स्ट गाना है फॉर रमा जी.

evergreen song. लता मंगेशकर एंड मन्ना डे. दत्ताराम का संगीत है, हसरत जयपुरी की लिरिक्स.

कौन जाने मैं क्या हूँ, सुनना चाहते हो? सुनो, मैं एक चांद हूँ जिसके माथे पे एक दाग है, मेरा दिल जलता हुआ चिराग है।

0: मोहब्बत की दास्तां तुमसे तुम तक हर रोज रात 8 बजे आपके अपने जी टीवी HD पर।
1: कुछ एक्साइटिंग खाने का मन है तो आओ एग जंक्शन लेस्टर। यहाँ मिलेगा सिजलिंग एग कीमा, फ्लेवरफुल बॉयल टिक्का राइस और स्पेशल वेज स्टार्टर्स। सब के लिए कुछ न कुछ है। 62-64 बेलग्रेव रोड LE4 5AS पर। चाहे डाइन इन करो, टेक अवे लो या ऊबर ईट्स और डिलीवरी से मंगवाओ, कॉल कीजिए 0116-332-5100। एग जंक्शन जो वेम्बली और किंग्सवे में तो है, अब लेस्टर में जहाँ हर बाइट है एक्स्ट्राऑर्डिनरी।
2: When you go abroad, everyone knows the best way to make yourself understood is to say everything in English, but louder.
3: 4 beers, please, garçon!
2: Just like when you amplify your advertising with radio. 40 million listeners every week get the message. See radio differently at radiocentre.org. Have you noticed the way fans shout at football matches?
4: Oh, wake up!
2: That's because conveying your message with sound is the most effective way to communicate to the players on the pitch that they're rubbish. And this works in advertising too. You see, research shows how brands that use radio to amplify their advertising are 49% more likely to get noticed. See radio differently at radiocentre.org. 40 million people listen to commercial radio each week. That's 80 million ears! Give or take. Amplify your advertising at radiocentre.org.
5: This is the largest commercial Asian radio network in the UK. Tasty track of the hour brought to you by Coca Noodles.

0: कितनी चुलबुली आवाज है मुनव्वर सुल्ताना की. आई थॉट यू'ड लव इट फॉर अ फ्राइडे, सिजलिंग फ्राइडे. इट मेक यू स्माइल. दिस इज फॉर साइमन यूसुफ. यस. हवा चले कैसे, लोग इस गर्मी में हवा ढूंढते रहते हैं. एंड हवा के झोंके की माफक एक लड़की आ गई है यहाँ पे, जिसका नाम है रेडियो वाली. जी हाँ,
1: वाली आपको देख के ना गर्मी और बढ़ जाती है मौसम की.
0: और हम यहाँ पसीने से रेबजेब हो गए आपको देखकर. हवा का चले कैसे, हवा का झोंका आ गया रेडियो वाली. फिल्म है दाग.

0: है
1: लाइका रेडियो।
2: यस, प्यार चाहिए या पैसा चाहिए, क्या बात है। इसका मीनिंग, द लिरिक्स एंड एवरीथिंग अबाउट द सॉन्ग हैज बीन सो ब्यूटीफुल एंड द बीट इज अमेजिंग। छैला बाबू, दैट इज द नेम ऑफ द मूवी, एंड लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत एंड आनंद बख्शी की लिरिक्स दैट मेक इट रिचर विद कुमार सानू एंड आशा भोसले क्रूनिंग विद द ब्यूटिफुल म्यूजिक। एंड द फर्स्ट सॉन्ग हमने दिल से, पहले तो दिल से रेडियो था, अभी लाइका गोल्ड पे फिल्म सैनिक का 1993। इंतशाब जी आपकी नज़र, बिकॉज आपने बहुत इंतज़ार किया था, सो इसलिए आपको सलाम और नमस्ते। एंड ये गाने हम आपको सुनाए, जो आपको अच्छे लगे हमें बताइएगा। एंड अब कंपटीशन का टाइम है। लाइका रेडियो नेटवर्क टीम्स अप विद जेज एंटरटेनमेंट फॉर अ चांस फॉर यू टू विन टू टिकट्स टू द गुजराती स्टेज कॉमेडी। एंड द स्टेज कॉमेडी इज सखना रेजो हस्बैंड जी फीचरिंग लीना शाह एंड समीर शाह। इतना खूबसूरत मैंने वीडियो देखा, पूरी टीम बुधवार को लैंड हुई जब एयरपोर्ट पे, इन्होंने अच्छा सा वीडियो भेजा था। एंड आई वॉज वेरी हैप्पी। जय कोटेक जी, थैंक यू फॉर कीपिंग अस इन्फॉर्म्ड। इट टेक्स प्लेस ऑन संडे 28 जून एट 2:30 PM एंड 7 PM। दो शोज है एट पीपल सेंटर इन लेस्टर। सो दीज टिकट्स आर वैलिड फॉर द 7 PM शो। I want to repeat that, क्योंकि फिर गलती हो जाए और आप 2:30 बजे वहाँ पहुँच जाए और फिर बोलेंगे मैंने तो कॉम्पिटिशन जीता था। सो ऐसा नहीं होना चाहिए। ये 7 बजे का जो शो है उसकी कॉम्पिटिशन है। एंड द विनर्स विल बी एबल टू कलेक्ट टिकट्स फ्रॉम द वेन्यू रिसेप्शन ऑन द इवनिंग ऑफ द शो। ऑफकोर्स TNCs अप्लाई। नाउ आपको क्या करना है, सेंड द वर्ड हस्बैंड, यस हस्बैंड विद द नेम, योर नेम, टेलीफोन नंबर एंड ईमेल आईडी। नेम, टेलीफोन, ईमेल आईडी, नेम, टेलीफोन, ईमेल आईडी। ओके, सो प्लीज आप वेन्यू पे जाएंगे तो कैरी योर आईडी फॉर सिक्योरिटी, सो दैट आगे गड़बड़ ना हो। 7 PM का शो है एंड आपको सिर्फ लिखना है, लाइक आई सेड अर्लियर, You got to just write the word husband and then your name, telephone number and your email ID. End of the hour, I shall announce the winner. Good luck!
0: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
2: Your £1 in British sterling can get you up to 124.35. 124.35 Indian rupees. Send money to India via SBI Yono app or branch before end of June and be in to win a £75 voucher every day when you send over £1,000. Also a 1 gram gold coin every week when sending over £2,000. TNCs apply.
0: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. Leica Radio.
2: जब मैंने कंपटीशन की बात की थी तो ऑफ कोर्स यू विल बी सेइंग मैसेज हम कहां पहुंचाए। जो आपको लिखना है हस्बैंड विद योर नेम, योर फुल नेम ऑफ कोर्स एंड योर टेलीफोन नंबर एंड योर ईमेल आईडी, यू कैन सेंड देम टू 07404793719 और 07424232323। गुड लक।
0: Radio. Football score updates brought to you by Rack Law Solicitors, specialists of family law, immigration law, property, civil disputes, wills and probates, and for other legal requirements.
2: Oh boy, it's gonna be a busy evening. 8 PM Norway versus France. That's Group I. Group I may Senegal versus Iraq. That's also at 8 PM. You make the choice which match you wanna watch. And we got Cape Verde versus Saudi Arabia. That's Group H. And that is at 1 AM. Or you can watch Uruguay versus Spain. That's also Group H at 1 a.m. And don't forget, you can get your 15-minute free legal advice with our sponsors, RackLaw, if you mention Leica.
0: This update was sponsored by RackLaw Solicitors. Call 0203 345 2000 or visit raklaw.co.uk. Get all the latest travel updates for the Midlands at Breakfast and Drive.
1: Gold Afternoons is sponsored by Gemin Foods, the authentic taste of India. From classic snacks to new flavors, find your favorites at your nearest Asian store.
3: Packed for the trip? Gifts? Passport?
4: Check. Just dreading that phone bill when I get back from India. Roaming is a nightmare.
3: Mate, you're doing it wrong. Just get Simzy.
4: Simzy?
3: It's an eSIM app. You buy a data plan for India starting at just $5. No swapping plastic SIMs. No kiosks.
5: Plans for Asia, Europe and beyond. Search simzy.com. That's SIMZY.com. T's and C's apply.
6: Citybound Travel proudly presents Yatra Tours 2026.
7: Discover Kailas Mansarovar, Chardham, Amarnath, Sri Lanka with Ayodhya, Ayodhya with Kashi, the Golden Temple Amritsar and more.
6: Book before the 31st of October and get £150 off Kailash or £100 off any other Yatra Tour.
7: Also explore 2026 cruises.
6: From Alaska to the Caribbean, the Mediterranean, Japan and Korea. Visit us at 5 Melton Road, Leicester or call Citybound Travel on 01162 167 225. We're Atoll Protected.
8: After the smash hit run in 2025, Surinderella is back for 2026. From the producers of Britain's Got Bhangra and The Deranged Marriage, Rifko Theatre Company turned this classic panto tale on its head and give it an exciting dizzy twist. Coming to the Belgrade Theatre Coventry 16th to the 19th of July. Click rifkotheatre.com for more info, and with tickets from just £15, make sure you book before the clock strikes midnight. Come join Surinderella this summer as she goes back into the Bollywoods. Surinderella, panto fun for all the family.
9: Radio partner Leica Radio.

0: Listen to the freshest hits added daily on Leica Radio.
1: Your father has built his business on trust. Your son will look for it online. No website, no future. Secure your legacy. Visit HartyHanks.com today. Harty Hanks. Build your future before someone else does. Visit HartyHanks.com today.
2: LenFi means quicker and safe way to send money.
3: LenFi means low transaction fees and great exchange rates.
2: LenFi means £10 sign-up bonus on registration for transactions over £50. Just use the code LIKA.
3: So send money today to India, Pakistan or Bangladesh with LenFi. Download the LEMFI mobile app today.
4: LenFi is registered by the FCA. T's and C's apply.
5: मेरे पापा को गुलाब जामुन बहुत पसंद है.
6: Order online at pujasweets.com. From barfi, laddus, gulab jamun to samosa and gathia. From catering starters to dessert. Pooja Sweets and Savories.
2: अभी कॉल कीजिए 0116-202-1222 or visit Melton Road, LE4-5EA.
6: Pooja Sweets and Savories.
7: स्ट्रीट फूड का असली मजा लो क्वालिटी स्ट्रीट फूड लेस्टर पर. ट्राई कीजिए क्रिस्पी पानी पूरी, स्पाइसी वड़ा पाव और डिलीशियस पाव भाजी. सब कुछ फ्रेश और टेस्टी. लाइट खाना है तो हमारे चीजी सैंडविचेस और किड फ्रेंडली ट्रीट्स ट्राई कीजिए. तो मिलते हैं 62-64 बेलग्रेव रोड, LE4-5AS. कॉल ऑन 0116-332-5100 और मेन्यू ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं. क्वालिटी स्ट्रीट फूड लूटन एंड विमली में तो है, लेकिन अब असली इंडियन फ्लेवर्स लेस्टर में.
8: Brands that use radio are 49% more likely to get noticed. Amplify your advertising at radiocentre.org. Assuming you want to get noticed.
0: Did you know you can advertise on this station, Leica Radio Midlands, plus our other offerings, Leica Radio Greater London, Leica Gold Greater London, and Leica Radio Greater Manchester. As a combined network, we can give you a competitive rate to spread your message to a wider audience. Call 0116 471 0697 or email sales at leicamedia.co.uk. A Leica Radio classic plays now.

0: to Laika Radio 90s. On Laika Radio mobile app, laikaradio.com and Alexa. Play Laika Radio 90s.
1: माँ को बोल कि जल्दी मच्छी लेकर आए.
2: हो अपनी माँ को बोलो मैं लेकर आऊंगा.
3: नाम परशुराम. अधर्म का करता हूँ काम तमाम.
1: अरे कहाँ हो तुम?
2: हो आलो आलो.
3: परिवार उसके लिए चारों धाम. बाहर वो है परशुराम.
0: Watch Mr. and Mrs. Parshuram Monday to Sunday at 7:30 PM only on Utsav Plus. Sky Channel 705, Virgin Media 803 and EE392. Feel good track. Brought to you by Dairy Valley.
4: Soft and tender, like grandma's warm hug, Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: देखिए एक नई मोहब्बत की दास्तां तुमसे तुम तक हर रोज रात 8 बजे आपके अपने जी टीवी HD पर।
1: कुछ एक्साइटिंग खाने का मन है तो आओ एग जंक्शन लेस्टर। यहाँ मिलेगा सिजलिंग एग कीमा, फ्लेवरफुल बॉयल टिक्का राइस और स्पेशल वेज स्टार्टर्स। सबके लिए कुछ न कुछ है। 62-64 बेलग्रेव रोड, LE4-5AS पर। चाहे डाइन इन करो, टेक अवे लो या ऊबर ईट्स और डिलीवरी से मंगवाओ, कॉल कीजिए 0116-332-5100। एग जंक्शन जो वेम्बली और किंग्सबरी में तो है, अब लेस्टर में जहाँ हर बाइट है एक्स्ट्राऑर्डिनरी।
2: It was just another day, a familiar drive through familiar country. But then, just around the corner, came the unexpected. He'd let his speed creep a little too high as he approached a bend. And he was no longer driving at the right speed for the road. The scary thing is, he didn't even realize. Driving even a little too fast for the situation is a major cause of collisions, especially on country roads where you don't know what's around the corner. Think. Don't let your speed creep.
3: You've got great products, loyal customers, but no digital strategy. You're one scroll away from being forgotten. Don't risk it. HeartyHanks.com. Hearty Hanks. Don't disappear. Dominate. Visit HeartyHanks.com today.
4: This is Leica Radio, part of the Leica Radio Network. Number 5.

देखो हर कामना मोहब्बत से मोहब्बत तक आसानी से सुलझ जाती है यारो, लव इज द आंसर, बस आपको आना चाहिए उसको बैलेंस करने के लिए. Let's do this. Take you out of the world. It's your first Friday cracker of the hour. Flashback with Radio Wally's Friday Firecracker. It is, of course, the ultimate cracker classic. Your Friday Firecracker, the original, the OG, with the beautiful Madhuri Dixit on the big parda. अगर आपको गिनती नहीं आती है ना, गाने के जरिए बहुत लोगों ने सिखाया है. एक दो तीन. Let's enjoy this one together, your Friday Firecracker of the Hour.

0: Southall Travel invites you to the beautiful city of Dubai. Enjoy the great shopping experience, luxury hotels, water sports, golf courses, Gold Souk, desert safaris and Dhow Cruise. There's never been a better time to go to Dubai.
1: Call 0208 574 8410. 0208 574 8410.
2: Southall Travel, Atoll Protected.
3: Welcome to the jungle.
4: Film bilkul fake.
3: Hamari film army wali.
5: और उसके लिए आप सभी को ट्रेनिंग की जरूरत है.
4: डेंजर एकदम रियल और सर्वाइवल स्किल्स जीरो.
3: स्टार कास्ट है
4: अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, अर्शद वारसी, परेश रावल एंड यू स्टार कास्ट ब्रिंग जंगल मैडनेस टू सिनेमास.
6: अन्ना कभी बाप जन्म में भी किसी ने गन पकड़ा था क्या?
4: वॉच वेलकम टू द जंगल इन सिनेमास नाउ.
7: चलो तुम दोनों को तो ऐसे फटके मारूंगा ना मैं
8: किस लिए फिल्म में.
9: वेडिंग सेलिब्रेशंस, कॉर्पोरेट इवेंट्स, रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं. परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक, वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं. 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए. फॉरन का फोन मिलाए 0208839080 और विजिट ragasan.com. लोकेशन, डिजाइन, मैनेजमेंट या केटरिंग, रागासन.
10: आफ्टर द स्मैश हिट रन इन 2025, Surinderella is back for 2026. From the producers of Britain's Got Bhangra and The Deranged Marriage, Rifko Theatre Company turned this classic Panto tale on its head and give it an exciting Desi twist. Coming to the Belgrade Theatre, Coventry, 16th to the 19th of July. Click RifkoTheatre.com for more info, and with tickets from just £15, make sure you book before the clock strikes midnight. Come join Surinderella this summer as she goes back into the Bollywoods. Surinderella, Panto fun for all the family. Radio partner Leica Radio.
11: CTV and C5 proudly present Hamari Ram, produced by Felicity Theatre. India aur Dubai mein houseful shows ke baad ab pehli baar London mein dekhiye Ashutosh Rana ko as Ravan aur Rahul R. Bhuchar ko Prabhu Shri Ram ke roop mein. Ramayan ki undiscovered stories live on stage 9 se 12 July, Eventim Apollo, Hammersmith. Hamari Ram.
12: Book your tickets now on eventimapollo.co.uk and use code Hamari Ram 10 for a 10% discount on all shows and tickets.
11: Exclusive radio partner Leica Radio. New hits on Leica Radio.

0: देखो नैना, ऐसी चीज है ना, बंदे को जिंदगी में या तो आगे लेके जा सकती है या पूरा गिरा के पीछे छोड़ जाती है। अभी मेरी पड़ोसन का ही ले लो, मैंने उसको इशारा किया कि यार मैं रियली अपसेट हूँ, आज तूने मुझे हेलो क्यों नहीं किया, मुझे एक्नॉलेज नहीं किया। और वो ना बच्चों की तरह मेरे को शक्लें बना रही है, अपनी टेढ़ी टेढ़ी आंखें बना के शक्लें बना रही है। सोचो मैं यहाँ अपसेट हो रही हूँ एंड शी इज पुलिंग फेसेस एट मी, बट देन शी टोल्ड मी इट्स बिकॉज़ आई रिमाइंड हर ऑफ हर वेरी यंग 21 ईयर ओल्ड नीस। तो मैं सोच रही हूँ अभी उसको माफी दे दूँ, क्या ख्याल है, दे दूँ?
1: With Radio Wally's roller coaster, only on Laika Radio.
0: But ye sari baatein chalti rahegi because right now we need to see what is happening around the globe. Century Radio Wally style is squeezing one last week check. Milte hain news ke baad.

0: up your evening with Radio Wally's Fri-Yay Firecracker.
1: Transfer money home and turn every transfer into a chance to win while making your money go even further with SBI UK.
2: Transfer £1,000 or more in a day to enter our daily draw for a £75 voucher.
1: Transfer £2,000 or more in a week to enter our weekly draw for a 1 gram gold coin.
2: Transfer now using the Yono SBI UK app, online banking, or simply visit your nearest branch.
1: And that's not all. Enjoy zero transfer fees and competitive exchange rates.
2: More value, more rewards, more reasons to choose SBI UK.
1: Offer valid from the 4th of May to the 30th of June 2026. Entries open to UK residents 18 plus. No entry fee and purchase required. Terms and conditions apply. Visit sbiuk.statebank for details. SBI UK Limited is authorized by the PRA and regulated by the SCMPRA.
3: जदों भी कॉमेडी मूवी दी गल हुंदी है तां एक मूवी दा नाम हमेशा आंदा है। ओ मूवी जिने सबनु हसा हसा के लोटपोट कीता।
4: की कह रहे हो?
3: ओ मूवी जिदी स्टोरी ने ब्रेन रॉट कीता।
4: की कह रहे हो?
5: गिप्पी ग्रेवाल, बिन्नू टिन्नो, सरगुन मेहता फिर तो लेके आ रहे ने पंजाबी सिनेमा दी सब तो वड्डी फ्रेंचाइज कैरी ऑन जट्टा 4 जिथे एडवोकेट टिल्लो फिर कहेंगे
6: पर टिल्लो ने काला कोट एवें नहीं पाया।
3: दिस 26 जून कैरी ऑन जट्टा 4 दे नाल थिएटर्स होंगे लाफ्टर दा स्टेडियम, क्योंकि ये सिर्फ फिल्म नहीं ए लाफ्टर दा फेस्टिवल है।
7: खाखरा क्रंच, भाकरी मंच, चिक्की स्वीट, पापड़ बीट, पिकल्स हीट, ये है जयमिन फूड्स का वाइब चेक।
8: एड देसी तड़का टू योर रूटीन विद जयमिन फूड के वैरायटी ऑफ स्नैक्स, खाखरा, नमकीन, पापड़, पिकल्स, चिक्की, पॉट मील्स एंड मच मोर।
7: जयमिन फूड्स, देसी क्रेविंग्स, अवेलेबल एट नियरेस्ट एथनिक ग्रोसरी स्टोर्स।
0: लाइक अ रेडियो नेटवर्क, प्राउड हॉस्पिटैलिटी पार्टनर, रागासन।
9: LemFi means quicker and safe way to send money.
10: LemFi means low transaction fees and great exchange rates.
9: LemFi means £10 sign-up bonus on registration for transactions over £50. Just use the code LIKA.
10: So send money today to India, Pakistan or Bangladesh with LemFi. Download the LEMFI mobile app today.
11: LemFi is registered by the FCA. T's and C's apply.
12: स्ट्रीट फूड का असली मजा लो क्वालिटी स्ट्रीट फूड लेस्टर पर। ट्राई कीजिए क्रिस्पी पानी पूरी, स्पाइसी वड़ा पाव और डिलीशियस पाव भाजी, सब कुछ फ्रेश और टेस्टी। लाइट खाना है तो हमारे चीजी सैंडविचेस और किड फ्रेंडली ट्रीट्स ट्राई कीजिए। तो मिलते हैं 62-64 बेलग्रेव रोड, LE4 5AS। कॉल ऑन 0116-332-5100 और मेन्यू ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं। क्वालिटी स्ट्रीट फूड लूटन एंड विमली में तो है, लेकिन अब असली इंडियन फ्लेवर्स लेस्टर में।
13: Location, location, location.
14: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
13: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas.
14: Located in Dubai, in a prime location for high appreciation.
13: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
14: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
13: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
14: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Danube. Prime location.
13: High appreciation.
14: In Dubai.
15: You're both on the same road. Same tarmac. Same rules. Just a different number of wheels. Motorbikes aren't in your way. They're on their way. Just like you. So use your mirrors. Check before you maneuver. And be aware of motorbikes. Because when we look out for each other, everyone gets where they're going safely. Motorbike safety. It's on all of us. National Highways.
0: A true Radio Wally cracker classic. Name the 90s number. This is Leica.

0: लाइका रेडियो पंजाबी लाइका रेडियो मोबाइल ऐप ते लाइका रेडियो .com ते एलेक्सा प्ले लाइका रेडियो पंजाबी पंजाबी।
1: मेरे पापा को गुलाब जामुन बहुत पसंद है।
2: ऑर्डर ऑनलाइन एट pujasweets.com फ्रॉम बर्फी लड्डू गुलाब जामुन टू समोसा एंड गाठिया फ्रॉम केटरिंग स्टार्टर्स टू डिजर्ट पूजा स्वीट्स एंड सेवरीज।
3: अभी कॉल कीजिए 0116202122 और विजिट मेल्टन रोड LE4 5EA।
2: पूजा स्वीट्स एंड सेवरीज।
4: Next, the biggest Asian love songs with Love Sound on Leica Radio Midlands. Flashing back with Radio Wally's Fry Yay Firecracker.

0: This is Leica Radio.
1: यूरोप और यूके के सपने देख रहे हैं तो मंत्रा हॉलीडेज के साथ ट्रेवल कीजिए. दिल की धड़कने बढ़ा देने वाले स्कॉटिश हाईलैंड्स, स्नोडोनिया के अफसानवी लैंडस्केप्स और स्टनिंग कोस्ट ऑफ कॉर्नवॉल को एक्सप्लोर कीजिए. आपका सफर होगा मैजेस्टिक स्विस एल्प से लेकर रोमांटिक पेरिस और टाइमलेस ब्यूटी ऑफ इटली के थ्रू.
0: विजिट mantrahollidays.co.uk और कॉल 02037736333 now. Apta bonded. Mantra Holidays. What's your travel mantra?
2: 105 shows पूरा करया पछी हवे लेस्टर मा आवी रह्यु छे एक धमाकेदार इंटरनेशनल गुजराती कॉमेडी नाटक.
3: जेज एंटरटेनमेंट लाइन आवी रह्या छे सखणा रे जो हसबंड जी
2: लीना शाह अने समीर शाह साथे हास्यनो फुल डोज. 28 जून पीपल सेंटर लेस्टर मा बे शानदार शोज बपोरे 8:30 वागे अने सांजे 7 वागे. टिकट्स बुकिंग माटे कॉल करो मिस्टर B07860280655 मुंबई सैंडविच स्टेशन 07834832249 अथवा इवेंट pride.co.uk. सकना रे जो हस्बैंड जी.
4: भारत या पाकिस्तान जाने की सोच रहे हैं तो एयर टिकट साउथ हॉल ट्रेवल से खरीदिए.
5: मगर साउथ हॉल ट्रेवल से ही क्यों?
4: क्योंकि उनसे ज्यादा सस्ती टिकटें कहीं नहीं मिलेंगी.
5: गारंटेड
4: बुकिंग करवाएं और उसके बाद 24 घंटों के भीतर कहीं से भी सस्ती ला के दिखाएं तो ये फुल रिफंड या प्राइस डिफरेंस वापस कर देंगे.
6: साउथ हॉल ट्रेवल
5: फोन 02085748410.
6: 24 घंटे किसी भी वक्त फोन करें 02085748410. एट ऑल प्रोटेक्टेड.
7: Pepe's Piri Piri is firing up its 258th store at 3 Tons Parade on Stafford Road, Wolverhampton. Get ready for flame-grilled chicken, mouth-watering burgers, wraps, rice boxes, and the bold Pepe's flavor you love. Now serving at Wolverhampton 3 Tons Parade. Pepe's Piri Piri. Taste the flame.
8: Uncle G spent £40,000 on rent, but zero online. His shop is empty. His nephew's TikTok is booming. Be seen. Visit HeartyHanks.com. Hearty Hanks. Outdated is out of business. Visit HeartyHanks.com today.
9: It was just another day. A familiar drive through familiar country. But then, just around the corner, came the unexpected. He'd let his speed creep a little too high as he approached a bend. And he was no longer driving at the right speed for the road. The scary thing is, he didn't even realize. Driving even a little too fast for the situation is a major cause of collisions, especially on country roads where you don't know what's around the corner. Think. Don't let your speed creep.
0: The greatest Asian love songs across the Leica Radio.

ये रात है ये तुम्हारी जुल्फें खुली हुई हैं, है चांदनी या तुम्हारी नजरों से मेरी रातें धुली हुई हैं, ये चांद है या तुम्हारा कंगन, सितारे हैं या तुम्हारा आंचल, हवा का झोंका है या तुम्हारे बदन की खुशबू, ये पत्तियों की है सरसराहट कि तुमने चुपके से कुछ कहा है, ये सोचता हूं मैं कब से गुमसुम कि जबकि मुझको भी यह खबर है कि तुम नहीं हो, कहीं नहीं हो, मगर यह दिल है कि कह रहा है कि तुम यही हो, यही कहीं हो।

मजबूरी हालात इधर भी है उधर भी, तन्हाई की एक रात इधर भी है उधर भी। कहने को बहुत कुछ है मगर किससे कहें हम, कब तक यूं ही खामोश रहें और सहें हम। दिल कहता है दुनिया की हर एक रस्म उठा दें, दीवार जो हम दोनों में है आज गिरा दें। क्यों दिल में सुलगते रहें लोगों को बता दें। हां हमको मोहब्बत है, मोहब्बत है, मोहब्बत। अब दिल में यही बात इधर भी है।

0: Breaker Radio Network. Broadcasting in Greater London, Greater Manchester and the Midlands with the UK's biggest Asian hits.
1: CTV and C5 proudly present Hamari Ram, produced by Felicity Theatre. India aur Dubai mein houseful shows ke baad, ab pehli baar London mein, dekhiye Ashutosh Rana ko as Ravan aur Rahul R. Bhujjar ko Prabhu Shri Ram ke roop mein. Ramayan ki undiscovered stories live on stage 9 se 12 July, Eventim Apollo, Hammersmith. Hamare Ram.
2: Book your tickets now on eventimapollo.co.uk and use code Hamare Ram 10 for a 10% discount on all shows and tickets.
1: Exclusive radio podcast. Like our radio.
3: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान देखिए दुबई की शान फ्लाइट होटल साइट सींग डेजर्ट सफारी यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे तो दुबई के लिए तैयार यू डू द पैकिंग दिल डू द प्लानिंग कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 020-8574-8410 दैट्स 8574-8410
4: For travel, at all protected.
5: Punjab, the biggest tunes.